गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि। तदनुसार तारीख 18 जून सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात, हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ये FM Sun City है, FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल

0: अभियान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम FM सनसिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब से सवेरे 8 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम है राही प्यार की। 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का।

सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। नौ बजकर 30 मिनट पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10 बजे अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11 बजे। 12:05 पर सुनिएगा यादव की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। कहानी पद्मश्री की अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट, उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा, उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला, इसका प्रसारण समय रहता है 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगी कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:50 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात 10:30 पर और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशलक्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशलक्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास।

ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेम्बर म्यूजिक से लेकर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित SL कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप तो विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित SL कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायोलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायोलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायोलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नजर आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियां हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16 सेंचुरी में
1: जी
2: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ है 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, थ्री वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपने लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो एस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडी वेरी।
1: अच्छा।
2: ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
2: अब स्टडी वेरियस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी,
2: वो स्टडी वेरियस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
2: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
2: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
2: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
2: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
2: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
2: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह। हाँ।
2: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा।

0: उस जमाने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
0: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी कंडारा जी, जी। ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
0: जी,
1: वो क्या खास फर्क है?
0: देखिए पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लुकासस वगैरह
1: जी,
0: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम।

0: तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ तार सप्तक की। और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्ध हस्त अधिकार है वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवर्ट्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं, क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति है कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी।
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी। और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेन्युहिन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेन्युहिन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी। उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
1: जी जी आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे भालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया। इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जैन जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि जो भी कह लें उनके लिए कम है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप।

0: साहब की वायलिन पर बजाई राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार, श्रोताओं संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Ja? Ha, ha,
1: ha. Hi, hi,
2: hi. ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विविध भारती पर लीजिए हाजिर है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।
2: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में राजकुमार फिल्म से, हर्षित जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। फिल्म का नाम कभी कभी।

0: श्रोताओं, अब वक्त है हम है राही प्यार के कार्यक्रम में एक छोटी सी अंतराल का।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम हम ही रही प्यार की में। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हम रवि के संगीत से सजा प्रेम धवन का लिखा गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्यार का सागर फिल्म से।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उषा खन्ना के संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत सुनिए। ओपी नैयर के संगीत से सजा मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहु

0: प्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं।

0: वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग

0: गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण। पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम।

जाने मन फिल्म से आपने सुना सोनू निगम को, गुलजार का लिखा हुआ कलाम था, अनून मलिक की धुन थी। अब जो अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म फना से। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल आवाज़ें हैं, प्रसून जोशी का गीत और जतिन ललित की धुन।

लम्हा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हैं। ये FM सन सिटी है, FM बैंड 102.1 MHz पर। सुबह के 8:30 हुए हैं, हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार हमारे प्राथमिक केंद्र से रिले करेंगे।

0: सभी सुधीर श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार। जहां हम सुनते हैं कुछ मनपसंद गीत, नए नवेले, कुछ गीत होते हैं जो पुरानी मेलोडी से सजे होते हैं और मिठास से भरे होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं जिंदगी की, यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की, यहाँ हम बात करते हैं पर्यावरण की, और यहाँ मुलाकात होती है मेहमानों से। ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।
1: इन सब के साथ होती है ढेर सारी बातें, जो हमारा मन करता है हम आपसे बात करते हैं और हम बहुत सारे गीत भी सुनते हैं। और बातों की अगर बात ही चली है तो श्रोताओं, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। अब हम थोड़ा सा क्लू दिए हैं आपको कि आज हम किस बारे में बात करेंगे।

0: और इस क्लू से आपको सोचने का विषय देकर हम बादस्तूर आगे बढ़ते हैं अपने टीम परिचय की ओर।
1: डियर लिसनर्स, हाई पावर ट्रांसमीटर पर है नरेंद्र सिंह राठौड़ और फारूक अहमद शेख।
0: वहीं एफएम ट्रांसमीटर से हमारे साथ है सीएल सोनी।

0: प्रोग्राम को टेक्निकली कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल रूम से इंजीनियर सुनील जयपाल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आज म्यूजिकल ट्रैक हमें सुनाएंगे निशिका।
1: वहीं एफएम ट्रांसमिशन से हमारे साथ है उद्घोषक नेमी चंद। और दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और इन सभी के साथ मैं कविता पवार
0: और मैं न्यू नूतन सोनी।
1: तो जिंदगी के बदलाव की बातें करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे आधे घंटे तक नए नए गीतों के सफर में। पर फिलहाल आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: पहले हमें सिखाती है प्रकृति। प्रकृति का नियम है श्रोताओं कि परिवर्तन जो है हमारे लाइफ का बहुत ही एक जरूरी हिस्सा है, और इसी से हम जो है लाइफ इंटरेस्टिंग भी बनी रहती है। दिन के बाद रात आती है और मौसम भी बदलते रहते हैं, और हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, और पेड़ पर जो है नए नए पत्ते आते हैं, नई नई कलियाँ खिलती है, फूल खिलते हैं। और यदि प्रकृति में बदलाव न हो तो हमारा जो लाइफ है वो भी एकदम ऐसा लगेगा जैसे ठहर सी गई है।
1: इन सारी बातों से एक बात साफ हो जाती है, और वो ये है कि समय के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, जिंदगी है। और दोस्तों, प्रकृति में अगर ये बदलाव ना हो तो जिंदगी में रंग कहाँ से आएंगे? ये
0: बिल्कुल
1: जीवन एकदम नीरस और ठहरा हुआ हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी बदलाव का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में भी नित नए बदलाव करते हैं। कुछ देर हम नए गीतों के साथ चलते हैं और
0: बिल्कुल
1: फिर हम पुराने गीतों की ओर रुख करते हैं। तो लेकिन सेकंड ट्रैक नए नवेले गीतों में से, ये आपके लिए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बदलाव की और जीवन में बदलाव की. उससे पहले हमने प्रकृति में बदलाव की बात की, और जीवन में अगर बदलाव की बात करें तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो टोटली जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और वो परिस्थिति के अनुसार उसको ढलना भी पड़ता है.
1: बिल्कुल, ये परिस्थितियां ही तो हैं जो कभी जिंदगी में विनम्र बनाती है, कभी जिंदगी में विद्यार्थी बनाती है, कभी जिंदगी में शिक्षक बना देती है। परिस्थितियां सच में इंसान को उसके अनुरूप जीना सिखाती है, आगे बढ़ने की सीख देती है और खुद को बेहद बेहतर बनाकर प्रस्तुत करने का अवसर भी देती है।
0: बिल्कुल. और जो इंसान ना इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, उसमें ढल जाता है, वो ही जीवन की जो चुनौतियां होती है उसको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ डील कर पाता है. और जो बदलाव से डर जाता है वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज से, संभावनाओं से खुद को दूर कर लेता है.
1: और ये जो आपने कहा ना कि जिंदगी की चुनौतियों में उनका सामना करने के लिए अपने आप को बदल देता है ना,
0: हाँ
1: उसको
0: हाँ
1: डील करने की एक आदत हो जाती है, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। और ये
0: हाँ
1: परिस्थितियां जो है इंसान में आत्मविश्वास भरती है, और ये आत्मविश्वास है जो इंसान को जीत की ओर अग्रसर करता है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नूतन, हम इंसानों की भी एक अजीब रिवायत है। हम जिस भी परिस्थिति में जी रहे होते हैं बस उसमें सुकून तलाश लेते हैं और वो फिर ठीक भी लगने लगता है। और वहाँ अगर अचानक से परिस्थितियाँ बदल जाएं तो वो बड़ा असुविधाजनक हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये बदलाव कहाँ से आ गया
1: और ऐसा
0: और
1: लगता
0: हम
1: है कि
0: घबरा जाते हैं।
1: हमें इस कंफर्ट जोन से क्यों निकाला जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे नई नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, नया शहर मिल जाए, नई जिम्मेदारियां आ जाए या जीवन में कुछ भी नया जुड़ जाए, तो हम एकदम से डावाडोल से हो जाते हैं और एकदम ऐसे लगने लगता है कि अल्लाह, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया, है ना।
1: पूरे जैसे हिल जाते हैं और
0: हाँ
1: हमारा ऐसा लगता है कि

0: हमारा व्यक्तित्व जो हमने एकदम कंफर्ट जोन में मजबूत कर रखा था खुद को,
1: हाँ.
0: वो पूरा कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा डिगमगाने लगता
1: जी
0: है.
1: जी
0: और देखा जाए तो आज का युग ही जो है बदलाव से भरा हुआ है, चाहे टेक्नोलॉजी हो,
1: जरूरी भी है.
0: हाँ, और चाहे संचार के माध्यम हो, हमारी शिक्षा प्रणाली देख लो, और हर हमारे हर काम के तरीकों को देख लो, उसमें भी बड़ा चेंज आ जाता है. और जो लोग इस चेंज को कदम से कदम मिलाकर स्वीकार करते हैं, वे ऐसा देखा जाता है कि बहुत सक्सेस होते हैं लाइफ में.
1: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है, ये हमारे अनुभवों को और भी समृद्ध बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और एक मजबूत व्यक्तित्व भी हमें देते हैं, है ना? तो परिवर्तन समस्या नहीं है, एक अवसर है जो आप

0: ये डर इंसान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। कहते हैं ना कि जो बदलता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं। समय की धारा में जो बहना सीख जाता है वो हर बदलाव को अवसर बना देता है।
1: हाँ, और जिंदगी ठहराव नहीं श्रोताओं, निरंतर यात्रा का नाम है और बदलाव उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है।

0: श्रोताओं 9 बजने वाले हैं, हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्ध को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में

0: नागरिकों को तुरंत सहायता मिले, उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में

50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। श्रोताओं, समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं। और आज हमने बात की बदलाव की, प्रकृति में बदलाव की, जीवन में बदलाव की और कैसे जीवन परिस्थिति के अनुसार हमारा बदलता है और हम लोगों से व्यवहार करते हैं। और टेक्निक में जो है इस फील्ड में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और वो भी कितने ज़रूरी है, इस तरह की तमाम हमने बातें की। और अब जो है निशिका इशारा कर रही है कि वो हमें एक म्यूजिकल ट्रैक सुनाएंगी।

0: तरह के गीतों को सुनकर आपको भी लगता होगा ना दोस्तों कि संगीत सिर्फ सुर नहीं, ये साधना है। कला सिर्फ रंग नहीं, शब्दों का जामा नहीं, ये साधकों की आत्मा की आवाज है। और इन साधकों की साधना को समर्पित सम्मान संगीत और संवाद में संगम के सेतु का जोधपुर में एक मंच सजाया है डॉक्टर स्वाति शर्मा ने। स्वाति शर्मा जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है उन कलाकारों से जुड़ी जिनके बिना मंच हमेशा ही अधूरा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा से, पूर्व अध्यक्ष संगीत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से। हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और ये स्वाति शर्मा, डॉक्टर स्वाति शर्मा सिर्फ एक नाम तो नहीं है, ये अलग अलग किरदारों का एक संगम है, तो जरा अपने बारे में हमारे सुधी श्रोताओं को कुछ बताएं प्लीज।
1: सबसे पहले तो मैं सभी जो भी सुधी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको सबको ही सादर वंदन प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा हूँ, मेरा जन्म जोधपुर में ही हुआ था और मैंने यहीं से अपनी संगीत की भी और बाकी शिक्षा दीक्षा दी है और संगीत के प्रति बचपन से ही जुड़ाव रहा तो उसी के लिए तैयारी करती रही और इसी साधना में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने पीएचडी कंप्लीट की। मैं एमए गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, संगीत के विषय में बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से 6 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, उनमें से संगीत चिकित्सा भी है और तार वाद्यों की उत्पत्ति विकास भी है, संगीत मंजरी भी है और अभी मैंने 1.5 साल पहले एक पुस्तक लिखी है जो संगीत के जो शोध विद्यार्थी होते हैं नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए तो उनके लिए मैंने लिखी है संगीत में सफलता के सोपान, तो उसका जो है विमोचन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया और मेरे कम से कम 35 से ज्यादा शोध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित है जो इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश है मेरे।
0: बहुत सुंदर,
1: छोटा सा मेरा।
0: और वर्तमान में आप?
1: मैं अभी संगीत में संगीत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ।
0: जी बहुत ही सुंदर, मतलब ये कह दिया जाए कि आपका जीवन संगीत को समर्पित है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और ये संगीत विभाग में जो आप सेवाएं दे रहे हैं उसके अलावा आपने इतने सारे शोध पत्र लिखे हैं और ये जो भी आपने किया है उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं जिससे संगीत और संगीत की आत्मा अमर रहे।
1: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने उसी के लिए एक जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के अध्यक्ष का दायित्व संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गौरव की बात होती है।
0: जी,
1: जब इस पद पर बैठने का अवसर मिला तो मन में ये संकल्प और विचार आना स्वाभाविक था कि राजस्थान की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को एक नई पहचान और उसको वैश्विक स्तर पर मंच कैसे प्रदान किया जाए। तो हम ये सब जानते हैं कि राजस्थान की माटी में कण कण में ही संगीत रचा बसा है, यहाँ के लोक गीतों में, मांड गायकी में और पारंपरिक वाद्यों में जो मिठास और गहराई है उसे एकेडमिक स्टेज पर और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता हमेशा से ही महसूस होती रही
0: और इसके लिए कोई एक अकेला काफी नहीं होता।
1: तो संगीत विभाग के अध्यक्ष के रूप में मन में ये योजनाएं और विचार तो आकार लेते ही रहे। इसी कारण से मैंने 2024 में एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया, मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान, इसका गठन किया और गठन के पीछे कुछ सखी सहेलियों और कला प्रेमियों के साथ में बैठकर और संगीत के गुरुओं के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में और बहुत सारा अध्ययन करने के बाद में ये कारवां शुरू हुआ और जोधपुर स्थापना दिवस यानी 12 मई की पूर्व संध्या को हमने 11 मई को हमने 2024 में शपथ ग्रहण का आयोजन कर इस कारवां की शुरुआत की।
0: बहुत सुंदर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: शुरू से ही ये विचार किया था कि इसमें आपको बताऊं मैं कि सिर्फ महिलाओं का ही हम संगठन रखेंगे ऐसा हमने सोचा था और हमारी 100 महिलाओं का संगठन है और इस संगठन में हर एक समाज और तबके से महिलाएं आती हैं, कुछ सरकारी अफसर हैं, कुछ

0: रहनिया हैं, कुछ कला पारखी हैं, कुछ वकील भी हैं, कोई प्रोफेसर भी हैं, ऐसा करके हमने 100 महिलाओं का ये संगठन किया।
1: बहुत सुंदर। वैसे ये आसान नहीं रहा होगा, है
0: नहीं,
1: ना?
0: आसान तो कोई चीज नहीं
1: जी
0: होती
1: जी
0: है
1: जी
0: जी।
1: अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो संस्था आपने शुरू की, ये जो एनजीओ आप
0: जी
1: चला रहे हैं, मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान,
0: हाँ जी
1: इसका खास उद्देश्य क्या है?
0: कविता जी, इसका उद्देश्य है कि लोक संगीत के संरक्षण का मेन उद्देश्य है। जैसे राजस्थान के दूर दराज के गांवों में फैली जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो गीत हैं, उनको दस्तावेज के रूप में सहेजना, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। एकेडमिक और व्यवहारिक तालमेल भी बनाए रखना, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों को संगीत की, शास्त्रीय संगीत की बारीकियों के साथ साथ राजस्थान की स्थानीय लोक संगीत जैसे मंगनियार, लंगा कलाकार और कालबेलिया परंपराओं के अनूठे स्वरूपों से रूबरू करवाना। और सबसे मुख्य जो उद्देश्य है इसका, जैसे लुप्त होते वाद्य हैं जैसे कमायचा, रावण हत्ता, सारंगी, भपंग, अलगोजा, और जो
1: मोरचंग।
0: नृत्य
1: हाँ।
0: है जो आजकल देखने में भी नहीं मिलते, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य है, कालबेलिया, भवाई नृत्य, कठपुतली, और गायकी में भी जो भी पारंपरिक लोकगीत है उसको आजकल कहीं सुनने में भी नहीं मिलते, और वो गीत जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हमारे घरों में गाती थी। तो हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि उन आर्ट फॉर्म्स को संभाल कर रखना, सहेजना और उन्हें संरक्षण देना।
1: जी, बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही नेक काम है, और इसके पीछे की भावना भी बड़ी शुद्ध है। तो सम्मान संगीत और संवाद के संगम का सेतु, ये जो आयोजन होने जा रहा है,
0: हाँ
1: इसके
0: जी
1: विषय में थोड़ा बताएं, और ये अवार्ड्स क्या होते हैं, इनके लिए कलाकारों का चयन कैसे होता है?
0: तो मरुधरा गौरव सम्मान के विषय में यदि मैं बताऊं तो राजस्थानी लोक कला और संगीत के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में अपना भूमिका निभाते हुए संस्था द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी होता है और
1: बिल्कुल।
0: योगा डे भी होता है, तो उसकी पूर्व संध्या यानी 20
1: बीस
0: जून
1: तारीख
0: को उन 11 प्रतिभावान कलाकारों को चिन्हित करके उनको सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने लोक कला को जीवित रखने में अपना विशेष योगदान दिया है।
1: ये हर साल
0: और
1: 11 होते हैं।
0: हाँ जी, हर वर्ष 11 होते हैं, और मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान द्वारा पिछले 2 वर्षों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, अल्लाह जुलाई बाई जो 1942 में जन्मी थी और मांड गायकी को उस
1: बिल्कुल
0: जमाने में जहाँ गाना बजाने को बिल्कुल हेय दृष्टि से देखा जाता था एक महिला के लिए,
1: बिल्कुल
0: उस समय में अल्लाह जुलाई बाई ने इंटरनेशनल लेवल पर मांड गायकी को
1: एस्टेब्लिश
0: अपनी
1: किया। बिल्कुल।
0: राजस्थान को पहचान दिलाई। इसके अलावा हमने जिन जिन को अभी अवार्ड दिए हैं उनमें माली छवरलाल गहलोत जी, कृष्णा छंगाणी जी, गौरी देवी जी, कालूराम प्रजापत जी, कुशल भारत जी, फतेह कुमारी व्यास जी, नारायण सिंह माणकलाव जी, अनवर अली खान जो पद्मश्री हैं, नारायण
1: जी
0: सिंह
1: जी
0: जी भी जिन्होंने नशा मुक्ति का एक कम से कम कई लाख लोगों को अफीम की लत छुड़वाई है,
1: जी
0: मोइनुद्दीन खान साहब जो खुद पद्मश्री हैं, श्री काफ निजाम जी जो हमारे शहर की जानी मानी हस्ती है और अभी उनको
1: बेशक
0: पद्मश्री मिला है,
1: जी।
0: शैलेश लोढ़ा जी, इला अरुण जी, बसंत काबरा जी, राजेंद्र जी वैष्णव, केसी मालू जो बीना कैसेट के डायरेक्टर हैं, गुलाबो सपेरा जी, सीमा राठौर सहित अनेक अनेक अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों और साहित्यकारों को ये सम्मान दिया जा चुका है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी वर्ष 2026 में स्वर्गीय सज्जन पुरोहित जी जो बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं,
1: हाँ
0: विक्रम और
1: जी
0: बेताल में बेताल की भूमिका भी निभा चुके हैं,
1: जी हाँ
0: उनसे आप पहचान जाएंगे। और
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा पद्मश्री लाखा खान जी हैं सारंगी वादन में, पूरा राम शर्मा जी है शास्त्रीय गायन में, अनुराधा अडवाणी जी हैं कला मर्मज्ञ हैं वो और समाज सेविका भी हैं,
1: बेशक
0: विदुषी पुलमा दास जोशी जी, साबिर हुसैन खान जी, उस्ताद नियाज अहमद खान, डॉक्टर रोशन भारती जी गजल गायकी में, डॉक्टर मंजूषा चंद्र भूषण सक्सेना जी हैं भरतनाट्यम में, और लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ है वरिष्ठ चित्रकार है जो 40 वर्षों से अधिक
1: जी
0: से
1: जी
0: अपनी चित्रकारिता में फेमस है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: फेनू सपेरा जी जो कालबेलिया नृत्य को ये अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई है, इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।
1: स्वाति जी, हम इस सोच को सलाम करते हैं। सच में
0: थैंक यू
1: ये
0: सो
1: बेहद
0: मच।
1: ही खूबसूरत कदम है, और कहते हैं ना कि इसके लिए अकेला ही दम भरना पड़ता होता है, कारवां तो फिर बनता चला जाता है। तो कला संगीत और कलाकारों के संवाद के सेतु में आम जन से कोई अपेक्षा या उनके लिए कोई संदेश?
0: बिल्कुल, मैं सभी लोगों से जो भी हमारा सुन रहे हैं

0: पॉडकास्ट, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसी महिला है या कोई ऐसा पुरुष है, कोई भी है जो उसमें थोड़ी बहुत भी कला है, तो उसको कला को पहचाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा होती है, उन्हीं को कला मिलती है, ये तो हम सभी जानते हैं, तो उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग मंच भी प्रदान करते हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, यदि आप में कला है और आप लोगों को मंच नहीं मिल रहा है तो हमारी संस्था आपको मंच भी प्रदान करेगी।
1: वाह, ये तो
0: और
1: बहुत ही अच्छी
0: सबसे
1: बात
0: अच्छी
1: है।
0: बात है कि हमारी जो संस्था है उसके संरक्षक के रूप में पूर्व महाराजा श्री गजेंद्र सिंह जी और महारानी हेमलता राजे भी समय समय वो हमारे संरक्षक हैं और समय निकाल कर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा मंच है, आप लोग हमसे जुड़िए।
1: तो डॉक्टर
0: और
1: स्वाति शर्मा जी, चलते
0: जी
1: चलते एक सवाल और जो हमारे जहन में है कि आप क्लासिकल संगीत से जुड़ी हैं, है ना,
0: हाँ जी
1: और इन
0: हाँ
1: दिनों का संगीत जो है वो एक अलग परिभाषा को लिए है ना। शास्त्रीय संगीत तो
0: हाँ जी
1: कहता
0: हाँ
1: है
0: जी
1: कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन आज का संगीत ये नहीं कहता। आज के संगीत में शोर थोड़ा ज्यादा है और आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है, शब्दों के मायने बदल गए हैं। ऐसे में आपके मन में संगीत के प्रति क्या विचार आता है इस संगीत को
0: ये तो
1: लेकर?
0: बड़ा ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। वाकई में संगीत की दुर्दशा जहाँ होती है, तो एक कलाकार और एक शास्त्रीय गायिका होने के नाते मुझे बड़ा दुख लगता है और बड़ा खेद लगता है कि कहाँ, जो हम बॉलीवुड अगर की बात करें तो पुराने जमाने में लता जी, आशा मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, जो ये तीनों बहनें, इन्होंने जो कमांड संभाल रखी थी और उस टाइम की जो लिरिक्स और जो संगीत होता था वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय धुनों पर बेस होता था। ऐसा नहीं है कि आजकल सारा ही संगीत गलत हो रहा है, लेकिन जो हिप हॉप और जो ये फास्ट म्यूजिक का जो दौर चला है, तो उससे हम लोगों के सामने हम क्या गंदगी परोस रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी भ्रमित हो रही है, हमारी जड़ों से टूट रही है,
1: जी
0: हमारी जो नींव है, जो हमारा मधुर संगीत है, उससे वंचित हो रही है,
1: बिल्कुल
0: तो ये बड़ी दुर्दशा लगती है। और इसके लिए बिल्कुल प्रयास करने चाहिए, बहुत लोगों को मिलके इसको प्रयास करने की और अपने संगीत की प्योरिटी को बचाने की
1: बिल्कुल,
0: आवश्यकता
1: संगीत सुकून का जरिया है ना,
0: बिल्कुल।
1: और ये बने रहना चाहिए। तो डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आपसे बात करके बेहद ही अच्छा लगा, और ये हमारे प्रोग्राम का दस्तूर है कि हम चलते चलते आपसे अपनी पसंद का एक कोई गाना पूछें और फिर हम और आप मिलकर उस गीत को सुनें।
0: बिल्कुल, तो मेरी पसंद का गाना है लग जा गले, लता मंगेशकर जी द्वारा
1: क्या
0: गाया
1: बात
0: गया।
1: है, ये तो मुझे लगता है सभी की पसंद होगा, है ना।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
0: मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: 20 जून का दिन जो अनसुने सुर, अनकहे संघर्ष और अनमोल साधना को सलाम करने का दिन है, उसके लिए हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और
0: थैंक यू
1: सुनवाते
0: सो
1: हैं
0: मच,
1: आपको ये
0: बहुत बहुत
1: गाना।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट।

0: बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के,

0: डियर लिसनर्स, अभी थी छुट्टियां और छुट्टियों में सभी लोग सोच रहे हैं कि अभी चल भी रही है छुट्टियां, एक्चुअली थी नहीं, अभी भी चल रही है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, कौन सी जगह सेलेक्ट करें। और एक ऑप्शन जो सबके माइंड में आता है और स्पेशली राजस्थानियों के माइंड में तो आता ही है कि कहाँ जाना है कि साहब गोवा चलते हैं।
1: तो अगर आज आप गोवा में हैं तो आज का दिन तो बहुत ही उत्तम होने वाला है, क्योंकि आज है गोवा क्रांति दिवस।
0: बिल्कुल,
1: आज 18 जून है और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पर भारत का एक हिस्सा 14 साल और गुलाम रहा और वो हिस्सा था गोवा। और आज है गोवा क्रांति दिवस। 450 साल की पुर्तगाली गुलामी के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी आज ही के दिन 1946 में। दक्षिण गोवा का मडगांव, जिसे मारगांव भी कहते हैं, उस समय शाम का 4:15 हुआ था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गोवा के क्रांतिकारी डॉक्टर जूलियो मेनेसेस ने एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर मडगांव चौक तक ही पहुंचे थे और हजारों लोग वहां जमा थे, जो पुर्तगालियों ने सार्वजनिक सभाओं पर उस समय रोक लगा दी थी। पर फिर भी डॉक्टर लोहिया का ये कहना था कि आवाज उठाना अगर अपराध है तो मैं अपराधी बनूंगा, क्योंकि मुझे गोवा आजाद चाहिए।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर लोहिया ने जो है अपने जोशीले भाषण के जरिए गोवा के लोगों को पुर्तगालियों की जो दमनकारी नीति थी ना दोस्तों, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने और अपने नागरिक अधिकारों के लिए एक अहिंसक संघर्ष शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था।
1: और ये सिर्फ भाषण नहीं था दोस्तों, ये गोवा मुक्ति संग्राम का पहला सत्याग्रह था और इसे ही इतिहास में गोवा क्रांति दिवस कहते हैं। इसमें अगले दिन जो है जुलूस निकला, लोग सड़कों पर बैठे, नारे लगाए और कुछ भी हुआ, लेकिन 15 साल तक ये संघर्ष चला और आखिर में गोवा आजाद हो ही गया ऑपरेशन विजय के जरिए।
0: बिल्कुल। और इस दिन जो है मनाने के लिए गोवा सरकार, स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों द्वारा राज्य भर में विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और रैलियों का आयोजन किया जाता है, और इस समारोह के माध्यम से जो अमीर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है।
1: और इसी दिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि गोवा के लोग खुद अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे और भारत उनका साथ देगा। हुआ भी यही। आज गोवा सरकार हर साल 18 जून यानी आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, युवाओं को उस संघर्ष की याद दिलाई जाती है। और कवि मनोहर राय सरदेसाई ने इसके बारे में एक बात भी लिखी है जो हम आपको बताते हैं कि उदक ले गीत जाले, रंगत आनी रंगत जाले होन, भावा तुका याद आसठ 18 जून। मतलब पानी में मिले खून और खून में मिला पानी, भाई क्या तुम्हें 18 जून याद है? 18 जून ये वो दिन है जब गोवा ने तय किया कि हम आजाद की सांस लेंगे।

तो 18 जून की बात चली ही है नूतन, तो 18 जून का इतिहास भी टटोलते देखते हैं आज की तारीख में क्या दर्ज है इतिहास के पन्नों में।

0: तो बात करते हैं 1576 की। आज ही के दिन मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था।
1: और श्रोताओं, 1858 को यानी कि 18 जून 1858 को 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।
0: और अब बात करते हैं 1979 की। तो आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किए गए थे।
1: अब बात करते हैं 18 जून 1999 की। तो इसी दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी दिन लातविया में वाइके फ्रेब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था।

0: इतिहास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और बात करते हैं 2008 की। केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी इसी दिन। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ श्रोताओं। भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।
1: और एक और महत्वपूर्ण घटना, वियतनाम ने विश्व बाजार में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी हुई पाबंदी को आज ही के दिन हटाया था।
2: रेशम की डोरी

0: तो दोस्तों, आज है गुरुवार और गुरुवार का सेगमेंट जुड़ा होता है हमारे पर्यावरण से। और आज का विषय है लानीना।
1: ये जो सुनने में बड़ा ही क्यूट सा आपको लग रहा है ना, ला नीना, इसका मीनिंग भी बड़ा क्यूट सा होता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है ये, जिसका अर्थ होता है, जैसा कि हमने बताया, बड़ा ही क्यूट अर्थ है, छोटी बच्ची।
0: और इस लानीना के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की समुद्री सतह का तापमान जो है वो सामान्य से काफी कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये घटना अल नीनो के बिल्कुल विपरीत अवस्था है। लानीना कैसे काम करता है? सामान्य परिस्थितियों की तुलना में लानीना के समय पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक जो हवाएं हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाती है, और इसके कारण प्रशांत महासागर का गर्म पानी जो है पश्चिम की ओर खिसकने लगता है और इसकी जगह पर दक्षिण अमेरिकी तट के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठने लगता है।
1: यानी कि ये हमारे मौसम को ठंडा करता है, और भारत पर तो इसका प्रभाव जो है बड़ा ही पॉजिटिव पड़ता है। इससे जो मानसून है वो बेहतर हो जाता है। इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अच्छी और सामान्य से अधिक बारिश होने लगती
0: यानी
1: है।
0: सकारात्मक प्रभाव रहता
1: हाँ,
0: है।
1: और जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो कृषि है उसको तो बड़ा ही फायदा होता है।
0: बिल्कुल, अच्छी बारिश होने से देश भर में कृषि उत्पादन और जल संसाधनों को भी बढ़ावा मिलता है। और सर्दियों के मौसम में लालीना के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सामान्य से ज्यादा कड़ाके की ठंड और शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।
1: ये तो बात हुई भारत की, और बात करें इसके वैश्विक प्रभाव की, तो दुनिया के अन्य हिस्सों में लानीना अलग-अलग तरीके से मौसम को प्रभावित करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व

0: एशिया में भारी बारिश और कहीं ना कहीं एक तरह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है वहां
1: जब
0: पे।
1: हम अल नीनो और ला नीना को सुनते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है कि ये दोनों सुनने में बिल्कुल एक से हैं, लेकिन अलग अलग कैसे हैं?
0: हाँ बिल्कुल, इनका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है श्रोताओं। ला नीना को एंसो चक्र की शीत अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसका प्रभाव ठंडा होता है, और इसके बिल्कुल विपरीत अल नीनो इसकी उष्ण अवस्था है, यानी कि इसका प्रभाव गर्म पड़ता है। पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान जो है बढ़ जाता है और भारत में कम बारिश यानी कि सूखा होने की संभावना रहती है।
1: ऐसा हम चाहते कतई नहीं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमारा पर्यावरण या हमारी धरती की जो तस्वीर है उसे हम हमेशा हरा भरा और अपने हित की रंगों में रंगे हुए देखना चाहते हैं और इसी कामना से आगे बढ़ते हैं।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: श्रोताओं, आज जन्मदिन है होमी मोतीलावाला का, जो नौकायन में एक भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्हें वर्ष 1993 में नौकायन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था। और इन्हें 1994 से 95 में पीके गर्ग के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद कोचिंग उत्कृष्टता के लिए साल 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
1: इसी कड़ी में हम याद करते हैं कि एस सुदर्शन जी को भी। ये एक सरल और गहन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। परम पूज्य कुप्पली सीता रामैया सुदर्शन जी इनका पूरा नाम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचवें सर संघ संचालक के रूप में 9 वर्षों तक आपने नेतृत्व किया और उसके बाद में स्वयं स्वस्थ रहते हुए मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी भी नामित किया।
0: इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी जी को, जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी थे। वे दादा धर्माधिकारी के नाम से जाने जाते हैं।

और अब याद करते हैं उन्हें जिन्होंने अपने काम से इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध धारक धावक

0: में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये पहले भारतीय थे।
1: बिल्कुल, और 1958 की बात करें तो 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, और 1958 की बात करें तो इसमें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
0: तो और इन सारे पदकों के साथ इन्हें 1959 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया, और 18 जून 2021 को, माफ कीजिएगा, कोविड ने ये शानदार खिलाड़ी जो था उनको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, और इन्होंने आज ही के दिन अपनी अनंत की यात्रा की ओर प्रस्थान किया।

0: नहीं रहना दूजा बनके, यही सोच रही उस्ताद अली अकबर खान साहब की। उन्होंने सरोद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इन्हें सरोद के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है।
1: और श्रोताओं, पुरस्कार भी कम नहीं मिले। पद्म भूषण 1971 में, पद्म विभूषण 1989 में, मैक आर्थर फेलोशिप, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिली, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका सरोद, जिसकी तारों से वो राग मारवा, राग यमन, राग भैरवी ऐसे बजाते थे कि लगता था समय रुक गया है, थम सा गया है। 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में 87 की एज में उनका निधन हुआ, पर सरोद की वो तान आज भी गूंज रही है जो अली अकबर साहब की 70 वर्षों की साधना है।
0: और इसी के साथ बढ़ते हैं समापन गीत की ओर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। फिल्मी अंताक्षरी, ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: निशिका का कहना है समय और सोच तो यही चाहता है लेकिन समय इजाजत नहीं देता। तो आज का नमस्कार का ये अंक बस यहीं तक। कविता
1: और नूतन सोनी को
0: दीजिए
1: दीजिए इजाजत।
0: अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: FM सन सिटी पर लीजिए हाजिर है कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी।

प्यार सच्चा है, सुर सच्चे हैं और अभिवादन भी सच्चा है। 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ कविता नेमी के संग। प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी।

0: हेलो
1: जी कविता बेन, नमस्ते। उजला से आवरदान उज्जवल
0: जी। आवर्तन जी, बहुत स्वागत।
1: जी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, आप सुनाओ कैसे हो?
1: जी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा भगवान आपको अच्छा रखे।
0: धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: हमेशा आप भी अच्छे रहें, ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और क्या गाना चुना है आपने?
1: आरजू फिल्म का गाना है,
0: ए
1: फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। ए फूलों की रानी बहारों की मलका।
0: आपके हर गाने पर आपके हस्ताक्षर होते हैं। और ये मुझे मुझे क्या, हमें लगता है कि सभी सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? आप हर गीत को आवरदान उजला के रंग में रंग कर फिर प्रस्तुत करते हैं। तो आवरदान जी, आज नेमी के भी मिजाज जो हैं थोड़े बदले बदले हैं। तो देखते हैं आज आपके लिए ये सेकंड राउंड में क्या गाना लाते हैं।
1: जी।

0: जी अच्छा लगा गाना।
1: जी बिल्कुल अच्छा लगा,
0: हाँ
1: बहुत
0: पता
1: अच्छा।
0: है मैंने जब कहा नेमी से तो उन्होंने काटने से इनकार कर दिया गाना, बोले कि अवरदान जी को और श्रोताओं को ये गाना बेहद अच्छा लगेगा। क्या शब्द चुना है आपने?
1: दिल
0: ओ इतना सारा गाना सुनाया।
1: जी,
0: ठीक है
1: दिल

0: दुखदा दिल का हाल सुने दिल वाला,
1: क्या बात है,
0: दिल देता है रो रो दुआए,
1: किसी से कोई प्यार न
0: दिल
1: करे, दिल है कि मानता नहीं।

0: दिल
1: क्या
0: पे तो
1: कहते
0: अनगिनत गाने, ये
1: जी
0: सबसे सरल शब्द है ना, और आपको इतने सरल शब्द नहीं चुनने चाहिए, आपके पास गीतों का खजाना है क्या, इतने आसान आसान शब्द चुनते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ेंगे आगे।
1: जी
0: उसमें एक ट्रैक प्ले किया जाएगा, आवाज आपको देनी है, संगीत हमारी तरफ से।
1: जी

0: कहीं दूर आजा आजा तले दुनिया वाले
1: दुनिया वालों से दूर मर्जी आए जहाँ से गाड़ी में नहीं बैठ सकते या वरदान जी है ना। तो इसमें यही होता है, हम क्या करते हैं, गांव में आदत होती है ना अपनी, बस धीमे कर दो अपने घर के आगे से चढ़ जाएंगे, लेकिन ट्रैक में ऐसा नहीं होता स्टेशन से ही चढ़ना पड़ता है वरना हम पीछे रह जाते हैं, है ना। पर आपका प्रयास बहुत सुंदर रहता है, आपके पास गीतों का खजाना बड़ा खूबसूरत है और संगीत से आपके जुड़ाव को हम नमन करते हैं। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: वालों से दूर जमीन
0: हेलो
1: वालों से दूर आजा आजा
0: हेलो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नमस्कार, कौन है फोन पर? हेलो,

0: तो दोस्तों संगीत की इस महफिल में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 25-53-25-54-300 डायल करें, और अगर आप मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं 0291 हमारा एसटीडी कोड यूज़ करें। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी,
0: नमस्कार,
1: मैं तेज सिंह खींची बोल रहा हूँ सर, हाउसिंग बोर्ड से।
0: जी तेज सिंह जी खींची साहब, बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: थैंक यू, ठीक है सर,
0: अच्छे हैं,
1: आपकी मेहरबानी है,
0: मेहरबानी, ईश्वर की हमारी दुआएं। चलिए क्या सोचा है, क्या सुनाइएगा?
1: हाँ जी ये गाना है रफीक साहब का,

0: मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी,
1: ये बात, ये
0: मुझे इश्क है तुझी से।
1: बहुत सुंदर, ये हमारे अंताक्षरी के मिजाज के गाने और अमूमन हमारे प्रोग्राम में इसी तरह के गाने हम सुनते हैं, सुनाते हैं, बजाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सेलेक्ट किया, बड़ी ही सुंदरता से इसे निभाया, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ और ये गाना करते हैं आपकी नजर। और इस गाने में से एक शब्द को आपको चुनना होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे।

0: क्या शब्द चुना आपने? नाम
1: अगर अगर
0: अगर, ठीक है।

0: दे दो तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
1: और
0: अगर बेवफा तुझको
1: क्या बात
0: पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते।
1: बहुत सुंदर। एक और। तुम अगर मुझको

है ना, बड़ा ही सुंदर गाना है और आपने सच में बहुत ही खूबसूरती से सेकंड राउंड क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं थर्ड राउंड की ओर और ये म्यूजिक ट्रैक आपके लिए है, पहचानिए और गाइए।

आवाज में भी हम हंस सकता गम कस सकता सांस में दे।

0: मुस्कुराते। ओ यहाँ से शुरू है आना फिर से। ये दो बार आती है ना ये लाइन, दर्द में भीगे गीत न दे, गम का से सकता साज न दे। बहुत सुंदर तेज सिंह खींची साहब, हृदय से कहना पड़ेगा आप बहुत अच्छा गाते हैं सच में। और बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार
1: जी, नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश दाबी है।
0: जी। ओम
1: पता है मैं
0: प्रकाश
1: करसंग निकाली कोला नहीं, गरीब बतीन से बोलो।
0: जी, ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं
0: क्या करते हैं आप? बड़ा स्वागत करते हैं
1: सिविल
0: दिल
1: स्कूल से
0: से।
1: बना था मैं,
0: अच्छा, और गाने
1: मुझे
0: सुनते
1: पता
0: हैं?
1: है।
0: रेडियो
1: हाँ
0: बजता रहता होगा हमेशा पास में ना
1: जी,
0: जी। तो ये है
1: अच्छा
0: फिल्मी अंताक्षरी प्रोग्राम, तो क्या गाइएगा आप अपनी पसंद का?
1: जी, ये
0: आप
1: गाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, जब सामने तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। साजन साजन ओ मेरे साजन।
0: जी, बहुत बहुत सुंदर प्रयास आपका। और ये जो फिल्मी अंताक्षरी है ना,
1: हाँ जी,
0: इसमें सेकंड राउंड में हम एक गाना सुनवाते हैं, एक शब्द चुनना होता है और उस शब्द पर आधारित चार गाने आपको निरंतर एक के बाद एक बताने होते हैं। तैयार हैं आप?
1: हाँ जी मैडम, क्या है मैं।
0: ठीक है, सुनिए फिर।

0: क्या शब्द
1: जी
0: चुना?
1: मैडम, इसमें तो सबसे सपना है या तुम है?
0: जो भी आपने चुना है, कोई भी एक शब्द, उसको लेकर आगे बढ़े।
1: अच्छा, तुम
0: ठीक
1: हम
0: है,
1: आप सबने कुछ खो गए, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। मतलब ये और ये जी मैंने सपना पे गाया था ना।
0: आपने तुम चुना है, दो गाने गा दिए हैं, दो और गाने हैं।
1: अच्छा, याद नहीं आ रहा मुझे।
0: तुम मुझे यूं
1: यू बुला तो न दोगे बल, जब कभी भी सुनोगे गीत में, तुम मुझे यू बुला तो न दो। अच्छा,
0: ये गाना तो नया बन गया।
1: और
0: तो हम आपसे इतना नहीं

0: दिन जरूर करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। आइंदा भी जरूर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए और गीतों को साथ साथ गाने का प्रयास कीजिए, है ना?
1: जी मैम,
0: और फोन करने के लिए शुक्रिया। हेलो,
2: हाँ नैनी भाई को, हमारे बहन कविता जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी प्यार भरा नमस्कार। महबूब भाई कैसे हैं आप?
2: हाँ मैं, दुआ है बहनों की, दुआ है ठीक हो।
0: चलिए, ये तो हमेशा रहेगी। क्या गाएंगे?
2: मुझे तेरी मोहब्बत का सारा मिल गया होता अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड राउंड की
2: आगे
0: तरफ। ये गाना सुनिए।

0: क्या शब्द चुना?
1: दिल शब्द चुना मैंने।
0: ठीक है, ज्यादातर वही चुनते हैं।
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।
0: तोड़ने वाले तुझे
1: दिल के अरमां आंसुओं में बहके, ढूंढ
0: दिल ढूंढ
1: रहा
0: रहा है,
1: है तुझे दिल ढूंढ ही रहा है।
0: दिल के
1: आपका पांच
0: झरोखे
1: गाना
0: में
1: गाया,
0: तुझको बिठा
1: दिल
0: कर।
1: के झरोखे में तुझको बैठा के।
0: चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया है ना? तो
1: हाँ जी
0: अब
1: देखो,
0: एक कदम और आगे बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ।
1: हाँ
0: सुनिए, पहचानिए और गाइए।

0: चाहे न माने
1: चाहे तू माने।
0: चलिए, हम गाना तो पहचान जाते हैं, लेकिन असल में जब गाने लगते तो ध्यान नहीं रहता कि कौन सी पंक्ति किसके बाद आती है, कितनी बार आती है ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। पर कोई बात नहीं महबूब भाई, आपने बहुत सुंदर तरीके से तीनों राउंड क्लियर किए, फोन किया, शुक्रिया।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
6: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
7: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
8: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
7: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
9: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
10: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
9: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
11: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
12: हेलो हेलो, हेलो
13: हेलो
12: जी,
13: अमांगनी भाई साहब नमस्कार। निमी भाई ने भाई से राम राम
12: जी, नमस्कार।
13: कृष्णाराम हर गुरु पावटा चौराहे से।

0: परवाना, मैं समा हूं तू है परवाना, मुझसे पहले तू ढल जाएगा।
1: अपने जमाने का बहुत अच्छा और खूबसूरत गाना है, बहुत बजा भी, खूब हिट हुआ।
0: हाँ जी,
1: चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ।
0: ठीक मैडम।

0: हाँ जी,
1: नाउ मैडम
0: कौन सा शब्द?
1: फूल
0: ठीक है,
1: बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुके होते हैं।
0: ये बात
1: मैं वन फूल, वन का फूल, मैं जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए। तीन
0: तीन
1: याद में बड़ा
0: फूल तुम्हें
1: में भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सबका
0: फूलों का, तारों का, सबका कहना है
1: कहना है
0: एक
1: एक
0: हजारों
1: हजारों
0: में
1: में
0: मेरी
1: मेरी
0: बहना
1: बहना
0: है। चलिए, पांच गाने हो गए
1: है। हाँ जी,
0: तो कृष्णा राम जी ट्रैक पर गाएंगे।
1: कोशिश करते मैडम।
0: ठीक है, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं।

0: अभी रुके, यहाँ से,
1: हाँ जी
0: यहाँ से शुरू होता है,
1: हाँ जी
0: गाना जहाँ से शुरू होता है वहीं से गाया जाएगा ना कृष्णा राम जी,
1: वहीं से तो गाया ना बेटा।
0: न माने चाहे

0: चलिए चाहे लाने चाहे जाने। ठीक है, सुंदर प्रयास कृष्णा राम जी, बहुत अच्छा रहा आपका फोन करना, आना गुनगुनाना, शुक्रिया फोन करने के लिए। और ये है संगीत की महफिल फिल्मी अंताक्षरी। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको डायल करना होते हैं 2553-2554-300। 0291 हमारा एसटीडी कोड है। हेलो हेलो।
1: हाँ सर, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी,
1: बरकत खान अर्ज करो सर।
0: हाँ जी बरकत खान जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: बहुत बहुत आभार साहब।
0: चलिए शुरू कीजिए गाना।
1: हाँ जी। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे,

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: क्या चुना आपने?
1: दिल्ली जाना चुनाया था मुझे।
0: सबको यही समझ में आता है।
1: हाँ, वो सरल है, जब भी तो याद ही गड़क कर रहा है।
0: सही सही सही। चलिए कोई बात नहीं, जो चुना उस पे आगे बढ़ते।

0: अगला गाना।
1: दिल क्या यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे।
0: और
1: दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,
0: बहुत बढ़िया।
1: हम वफा करके भी तन्हा

0: चलो मतलब
1: चोट मोहब्बत की भर आई है।
0: तो बरकत जी पार तो लग गए। अभी थर्ड राउंड में ट्रैक पर भी गाएंगे?
1: जी नहीं बहन जी, आज की मुलाकात
0: बस इतनी? चलिए कोई बात नहीं, आपने जितना गाया जितना गुनगुनाया बहुत अच्छा, शुक्रिया फोन करने के लिए बरकत खान साहब।
1: बहुत आभार आपका।
0: हेलो,
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल?

0: रहे हैं?
1: मूलचंद सोनी।
0: मूलचंद सोनी जी, जी बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया
0: हमेशा इसी तरह बहुत बढ़िया रहे
1: जी,
0: हैं।
1: थैंक
0: ढेर
1: यू।
0: सारी दुआएं आपके लिए। गाना शुरू
1: बस
0: करें
1: थैंक
0: प्लीज।
1: यू। खिलौना
0: आहा,
1: जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते।

0: जाने कर
1: दिल
0: तोड़े जाते हो। क्या
1: जाते
0: सुंदर गाना है, आहा आनंद आ गया। चलिए इसी आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। यह खूबसूरत सा गाना सुनिए।

0: तो क्या शब्द चुना आपने?
1: हम
0: हम। ओके, शुरू करें।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: नेक्स्ट, अगला गाना।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: जी, अगला।
1: हमने पुकारा और
0: ना ना ना ना ना ना ना ना,
1: ना
0: ये
1: ना,
0: गलत
1: सॉरी
0: हो
1: सॉरी
0: गया। तुमने पुकारा और हम चले
1: हाँ सॉरी
0: आए।
1: सॉरी
0: तुमने पुकारा
1: हम चले आए,
0: और हम चले
1: दिल हथेली
0: आए,
1: पर
0: दिल हथेली पर ले आए रे। एक और।
1: ले आए, दिल पुकारा।
0: एक गाना और।
1: जी, हो गया, टाइम भी कम, जल्दबाजी, सारी चीजें एक साथ तो मुश्किल होती है वो। और
0: हमको हमी
1: चुरा लो।
0: से, ये आपकी टाइप का।
1: नहीं हमारी टाइप का, हमारे टाइप का मोहब्बत का है। हाँ वैसे और भी बहुत गाने हैं, पर

0: चुरा लो।
1: ये आपकी टाइप का?
0: नहीं हमारे टाइप का, हमारे टाइप का मोहम्मद रफी का है। हाँ वैसे और भी बहुत गाने पर एक नाम पकड़ना पड़ता है।
1: दिलते चुके सनम, बड़ा मीठा गाना है ना। तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा ऐसे। चलिए ये राउंड क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। ट्रैक पर गाइएगा। चलिए

0: समा लो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: लगभग करीब करीब चल रहे हैं आप बहुत। तो बहुत सुंदर प्रयास सोनी जी, फोन आपने किया, खूबसूरत गीतों से रूबरू करवाया, शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार कविता जी।
0: कैसे,
1: एकदम बढ़िया।
0: नाम बताएं अपने श्रोताओं के लिए।
1: मैं भगवती मंडोर से।
0: जी, जल्दी से गाना शुरू करें प्लीज।

0: भगवती जी, आपसे कोई गाना पता है क्या?
1: हाँ हाँ
0: जल्दी से।
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
0: और आप, चलिए हम अपनी तरफ से एक बात कह देते हैं।

0: फिल्मी अंताक्षरी। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। आइए सुनिए कार्यक्रम टैम ने नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टैम ने नमस्कार।

0: आपको इस प्रोग्राम से प्यार हो जाएगा, है ना?
1: तो प्यार बहुत है।
0: आपने बहुत लास्ट कुछ ही पल बचे तब आपने फोन किया, इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर से इंतजार जरूर करेंगे। आप फोन कीजिएगा प्लीज, इस बार के लिए शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।
0: और दोस्तों, फिल्मी अंताक्षरी को देते हैं बस यहीं पर विराम। नमस्कार।

0: قد باري अरे कद भरी भाई कद भर गई भरी कद है कोई
1: मैं पूछूं थाने पानी कद भरी
0: भरी तो मैं कहूं भरनो कहो
1: अरे
0: तो
1: भरी बरसी कद
0: हां मैं ओई कहूं भाई हमें तो जेटी की ऊपर असाडी हाव कहनी हुको जाहे की कर होई
1: थे को जन ठा पड़ी मन ठा पड़े कोनी
0: मैं तो घणी होई
1: थे हुकन लेवन गया था नहीं बजा कती जो मत बार कन
0: अरे गया पण भाई मैं तो घणी होई पण थोड़ो कहो है मान को जिन मार घाले नहीं उन मार की कुदरत हाले
1: या
0: हम कोई चीज है जो कोई एक तो बिने मांगिया कोई दाओ
1: हां
0: तो हाथ हुए जब तो आवे
1: सही बात
0: है हां पज कहो है कि भाई के जे मांगियोड़ी कोई है के मिने दे कोनी नहारो दे कोनी कि नहीं की है जो को
1: हां मिने
0: तो भाई फस बेका नहीं के जड़ा बाओ जड़ काई उगी
1: उगी मतलब
0: हां
1: सही बात है तिरसा वे तिरसा
0: है
1: तृष्णा तृष्णा
0: कौन बोली जो कोनी
1: हूं बोलू ने
0: बात करे कि हुनी जी कौन मंत्र बात थारी
1: तृष्णा तृष्णा आ है भाई
0: हां
1: के भाई तिरस कई बे
0: अरे पण कुंडियो भरियो कदी पानी नो
1: रोज भरू
0: बैरिया रोज
1: रोज भरू
0: मैं कहयो भाई देखे खेली भर दे कुंडिया भर दे
1: ओ काकू यो कौन करे है धोन भरियो देखो हाथों
0: अरे मैं बीटा पड़ी मैं है देख भाजी भरी मने को कोई आ मार कोई हां कि हम घी लावे
1: अरे भाई काकू तो दिन भर में मैं देखो दिन भर में सुबह और शाम वे के जितते तो मैं कचरो न बिटो न आ जा मैं काय करू मैं तो हवारती पोर है नी
0: हां बा खेल की है बा धोन भरी वो निको देखे भाई
1: देख गाय आली खेल खेली भरी कबूतर मेलियोड बो कुंडियो बो भरियो धोन एन ओ एक ऊपर गोकड़े मत पड़ियो बोई में धोन भरियो
0: अरे सुन सुको जई जे बड़ा हाव को यूं कोवे
1: पाड़ मेलियोड़ो देखो थे
0: मेलियोड़ मैं थे बीज की जिको है वो बट्टो बंद को बात करो है जवान बाजरी भेरी का रजित बबदू मारे वो है एक एक चीज नहीं रखूं कहूं हाँ यू तोड़ी हूं बात करो
1: हाँ मैं निंगे नहीं दी ऊंचो मेलियोड़ मंदी
0: ऊंचो मेलियोड़ कहूं मैं कोई है जिको भाई जीव आप खुद आप रो शरीर रो जाप तो रखो ध्यान रखो जीव बार राखो तो घनी में बड़ी टेम मत है नहीं तो उबा बाहर जो जो कटी में है कोई छाट है हो जी
1: मत को काकू
0: तो और कहो है भाई
1: को देखो थार की ओड़ी लोर लकीर गिनू तो
0: मैं तो घनी हो या कौन भाई हो ही कह नहीं भाई देखे
1: पहल की थे क्यों के भाई थोड़ा देखो दीजो राखो मैं गणो यो तो हो हाजी
0: मारो मैं

0: अरदास
1: करी मिनकरी जीव जिन्नो जी आई अरदास भाई मैं हो जा तो मैं आप रे
0: अपर खेत में बे हाथ टोली खाद ला नागियो हेजू पड़ियो है कोई थे मुंडो नी करो भाई जंजर के जान बिकेर दो तविया करना था पर मम कह नहीं भाई हैंग डीलर फूंका दे बात
2: ना काकू एड़ी बात को नहीं थे बोलायो कौन बोलायो वे इतने बोलायो बड़े मन तो बिना बोलायो
0: बिना बोलायो करे के वो है भगवान रूप अन जिन की निके कौन भाई का चीज पर हमें इन टाइम मत करनी है तो जे बोलायो कर दे तो ठीक है मिन ग्रुप बोलायो कोई नहीं कर वो डंडा रूप में फिर
2: आज हम कहो के आवर देख लीजो
0: वाकी कौन देख ली हम भाई ये बात करो भाई सैन उन्हें मारो कम पर हकरो नहीं लागे क्या क्या
2: ओ इमें फोर को लागे का कु
0: अरे हाची का मुझे हाची का मुझे मन कोई को चावे नहीं
2: ना ना हाची बली को कन थारी हाची के उड़ी मारे थोने होने रुपी है
0: वाकी कौन भाई ये
2: थे
0: बात बतल करो भाई सैन राम राम
2: हाँ गणी कराओ
0: है
3: राम
0: राम राणो जी
3: जानकारी
0: है पर थारो कह नहीं हिम्मत कोई नहीं
2: तो एक तो वह घोटनो एंड एक वह बोटनो
0: सब्जी बोटनी
2: काटनी जिन्हें कहे बोटनो हकदी रगड़न एक मेक करे जिन्हें कहे घोटनो हाँ हाँ बो है घोटनो हलाड़ी खींच घोटन जी में खींचड़ी घोटन जी में दलियो घोटन जी में
0: नाया
2: धोया कई बे तो मीन तो मछली सदाई जल में रहे बा तो नाती ज रहे पण तो ही उने धोयोड़ी उनी भास नहीं मिटे तो क्यों
0: बात ने देखो रण जी पहला यो लगान कान खोल नूणो इमे ही पड़ उतरे संत महात्मा ओलिया फकीर कहो के नाया धोए क्या होए जो मन में मन का मेल न जाए मीन सदा जल में रे धोए न बास जाए आत्मा ठेठ आत्मा कपटी नर सुधरे नहीं सर संतन के संग और मुझ भिगो गंग में तो भी
2: तंग की तंग
0: समझिया
2: इनो मतलब वो है सबावरी बात है नहीं
0: हबाव है जारा पड़िया सबाव जासी जीव जतन सो राण जी हो हमके बर्फा की फोन करके हाँ देखो भाई अपारे बडेरा जगह कहन किया के बे बातारा कोई लिखा रहो एक आदमी को हनी जिन्हे ये में कोई बात आई जिन्हे मगज में आई बे कई बा ओले ओले मिनकार मुंडे आवती आवती थेट

0: आज तक पूगीन भले आगे पूगी
1: दके पूगी
0: राम राम
2: राम राम समागणी काकू ने कविता भाई ने राम राम
1: राम राम कहता कहता काव तो बन की कौन का
0: हां
2: कृष्ण राम हर करू
0: हां कृष्ण भाई आओ
2: और काकू तबीयत बीजी केडी है
0: ठीक है भाईओ
2: वाह काकू वाह वाह वाह
0: तो पावड़ी चढ़ जाओ एक तो वे दमादम
2: ना
0: और एक वे दमादम
2: दमादम दमादम तो कर दिया आप की कूटा उकड़ी में डाले जब वो दमादम करेगी अलग लक्षण है की कूटा नहीं वाने दमादम के और एक कहीं पूछेगा को
0: दमादम
2: दमादम
0: बतानिया को पूछी ले सामा जाए के ठीक हाँ पक्का उत्तर मिल जाएगा हाँ पुट्टी फोन करना राम राम भाई ये फोन ही आवे फोन घर तो
1: घर ही आवे
0: राम राम लो आवे बात करो टावर कपड़े ही कोनी राम राम आज रेडियो में खोट मार है
1: नहीं है का
0: मैं कहूं है कि किन को नहीं मुंह पर जहां भी हूं कहूं खलक मुलक बताओ मने
1: या
0: हाँ राम राम
1: हेलो
0: लो पते हूं भाई ये धोला पटिया नहीं कोई तावड़े में फिर भी को लिया नहीं कह लंपरो तेल को लगाया नहीं
1: हाँ नहीं
0: मैंने कहा ठोकर खाई जन जने ठोला खाया राम राम
2: जय माता
0: जी जय पिताजी ए रणजी आया भाई ए बस हूँ को बोली हमें आया
2: तबीयत बड़ी हावली है
0: हावली है हाल तक तो बजा नहीं की करो
1: एक तो वे रणजी जाप तो एक वे भाप तो ना जाप तो एन भाब तो
2: जाप तो कोई मतलब
1: है
2: मतलब कोई सही ही होगा जाप तो रखे
0: हाँ जाप तो रखे
2: भाब तो मैं आदि भागने के लिए
1: भाब तो कोई नहीं समझ आई
0: वाह मुझे बढ़कर दो बढ़कर भाई देखे घीओ लगान हुनो थोड़ो आप रो प्रोग्राम है थे क्या नहीं हो
1: बोली आपो आप री है शब्द आपो आप रहा है
0: राम राम को कर राम राम वाह है
2: राम राम
0: हाँ राम राम कौन बोलो
2: रानी वाड़त बोलो राजू
1: राजू भाई
0: तो राजू भाई एक तो वे आंगनो
2: आंगनो
0: एक वे छांगनो
2: काकू आंगनो तो वे अपने सीमेंट रोक रहे आंगनो वे पहला गोबर रोक रहे वो आंगनो वे एक वे सांगनो जो पहला अपने खेजड़े समय तो संग्रह सांग था या झाड़ को सांग था
0: सांग था
1: सही
0: बात हासी राजू भाई थे हवन फटकारे उत्तर प्रो दीजो पहले पौड़ी अपरा सडिया बीजे पौड़ी सडवारो मन है
1: कन्नी है कोप
2: आप गुम कर रहे हो आप
1: यो
0: के मुकड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया
1: धर्म नहीं मन में
0: कागज की एक नाव बनाई जा छोड़ी जल में अरे धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में
2: आपको नहीं आया कि मन में पाप है तो बसे मुकुड़ बलि दर्पण में देखो पर वो मायल मेल नहीं निकला तो बसे बलि मुड़े देखो आवाज है वो
1: मायल मेल काटना जरूरी कौन
2: मायल मेल काटना जरूरी है बसे हाँ। दर्पण में देखो बलि गंगा जी झीलो बरोबर है
1: हाँ फूट रो तो पचे ही वे इंसान कौन
2: है
1: आप बात कही थे खरी
0: मन चंगा तो कटोती में गंगा
2: तो कटोती में गंगा
0: मुझे पौड़ी चली हम तीजे पौड़ी भाई थे आऊं दो कोई आड़ी आको
2: हाँ तो उन्होंने कहा
0: को
2: लकड़ माते कुकड़ बैठी कास जड़ी काया

0: ओ नाम नहीं बताओ तो पे मनक तुम्हारे क्यों आया?
1: ओ गुण घड़े खादो
2: खादो कि नहीं खादो ठेको
1: खादो का
2: एन खादो का नो बावली यार खादो के खेजड़ी और खादो के
0: हमें काको ही है कि बीमार के में मरे हमें गाड खेजड़ी और आवे के बावली और आवे
2: कोई था के राम ने ठाए कौन
0: हाथ उलाव था मैं तो मार के तुम्हारे
2: हां सही बात है कोई कौन नहीं थी आया जो कोई नकली बात
1: कर दो रानीवाड़ा से फोन आयो મારો જીવ હોરો એને જળોરથી આવતો ને ભલે ભીનમાં ભીલ માલથી આવતો હેંગ ઢોળથી ફોન આવે છે મારો જીવ હોરો વે ભાઈ ઓ કા હે અમે
2: ઓ જીવ હોરો કરો
1: ઓ મીઠોડો ગીત છે
2: મીઠોડો ગીત
1: વાહ હોણા
2: એને એની તાર કાયા મૂત્રે જેડો ગીત હા

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
5: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
9: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अब आप सुन रहे हो कार्यक्रम टीम ने नमस्कार।
4: वाह भाई, ये
5: आओ काको।
4: हाँ,
5: गीत हाँ मिलियो तो अंदाज पड़ियो कि नहीं पड़ियो।
4: पर भाई देखे बात ये है के मुसाफिर तो खैर है ही है, पर कई तो आवे जिको कहनी का आपरे कितने कहनी उम्र ले इनकी कोई करन जावे कोई बात। और कई है जो भाई देखे नन्ही उम्र में घना काम कर जाओ पड़ा है कौन।

0: भाई मुसाफरी तो हर
1: एक तो वे जीवन जावनो ने एक वे दिन बितान जावनो
0: हाँ बात आए कि भाई ठीक है
1: हर के तो भी बात हमको
0: बात आए जिको भाई देखे कह बिरला मिनक वे पर बादे पौर याद करा
1: करो
0: वे है जो कहीं है भाई के दुनिया में कई आप लोग काम करन जावे तो नाम ही मार हुए
1: असल जीवनो भाई जे
0: समझिया नहीं क्या उम्र गणी होगी नवाकी कोनी बा थारी मारी करी नहीं होगा तो बैठ बनू भाई मारो
1: ना थन कड़ा याद करी लो का
0: हां ओ न मार तो करी नहीं कर की भाई मन कोई चावे कोई बात है मारू बात नहीं करनी आड़ी बात करे मैं आज पहले ही कोई मन कोई चाहिए
1: को थन नहीं चाव जन किन चाव काकू
0: भाइयो भाई बोला रो मिल घुणे मारो कहीं हकरो को लागे नहीं राम राम
2: राम राम बा
0: राम राम बा राम राम ठीक कौन बोलो
1: जतिन
0: भाई की रोड बोलो ओ आके कौन हम पौड़ी सड़ो ओ आके कौन हमके बड़ फोन कर दो हो मत तो करे मुतबल को नहीं भाई
1: हाँ।
0: क्या भाई आप क्या फटकारे करी है ए नंबर नहीं बताओ तो भाई सन ठाई है हाँ। है को नहीं
2: हाँ।
0: है
2: आपको नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार है
2: मैं दौलतराज चौहान बोलू प्रताप नगर सा
0: ओ दौलत
2: राम राम सा काकू
0: राम राम सा राम
2: भाई सन अभी राम राम
1: राम राम हुक्म राम राम
0: हम पावड़ी सन्नो
1: दौलत राम जी
2: आता आपरी करता
1: एक तो वह बावड़ एंड एक वह हावड़
2: बावड़ मतलब नहीं वो बावड़ मतलब नहीं आंधी तूफान हवा बावड़
1: ठीक है
2: और एक
1: हावड़
2: हावड़ मतलब स्वस्थ ठीक
1: सही ठीक बिल्कुल ठीक
0: हेलो देखो दौलत भाई है जी वो थारी मंदरी है जिको कह
1: मन में चाननो घणो ही है
2: साबू बात करनी थी मने बहुत खुशी हुई
1: है मन में घणो ही चाननो है थारे जल ताता जल सोयला निर्मल बिस्वा बीस जल में जादू बसे न जल में बसे
0: जगदीश हाँसी बात है जड़
1: जल बिना की नहीं
0: जड़ है तो है कड़ है और जड़ क्या नहीं भाई जड़ में जगदीश जड़ है जो हाँ। मैं है देखो कुदरत रो निजाम है भाई
1: बिल्कुल
0: मैं परे जो हैंगर वाद परे
1: बस बस बस
0: तावड़ो पड़े हैंगर वाद ही तावड़ो पड़े और ही पड़े हैंगर वाद वाद दोन भाई हो गए फिर दूजे पौड़ी से काम दूजे पौड़ी एक आड़ी आग दो आड़ी आको थे
1: कोई आड़ी याद है आपने
2: आड़ी तो जानी मने नहीं जो नहीं आता
0: क्यों कही हाँ
2: आप बने अब तो बहुत ज्ञानी होता
0: अरे की कौन गुड़ता गुड़ता गोल होगा हमें थे हुनो हाँ हल्की आड़ी आकू क्या चार बरस री बींदनी अस्सी बरस रो बींद आगे चाले बींदनी लारे चाले बींद आंगने मोती लिया उठाए देखी तो कड़ी हुई दल भाई
1: मांगिया दिया नहीं जाए
0: वाह की कौन सी बात है कोई बात नहीं भाई यही फोन करियो आज कितनी खपत करी करो तो भाई देखो ये प्रेम है राम राम आ
1: थारी चाव ना नहीं है जन पस काई है काको
0: हां बात है
2: गणान गणा राम राम सा
1: राम
0: राम राम, राम, राम।
1: बरकत जी ने पूछ लो बरकत जी थे काको न चाव कि नहीं चाव
2: काको ने कविता जी ने पूरो आकाश को निष्ठा बनल सरो ने हैंगन सावा चाव

0: ओ भाई ये बंदा आयो कोनी नो तो कहीं कह मिश्रो नी मिश्रो कब कह घरो आडो देन बो पहला कौन टा की बो लाव तो मोटो खो बो कौन कह बो दमीरो हाँ ऐ न पचे बजा बजान कूद कूद नाचतो कौन की है रवि में बात करो पचा तू एक दो बार थोड़ो कहो जो नाइको तू फेट कट जान पुगो
1: सही बात
0: हाँ बात है जिको मैं ऐडा गया भाई नवे टाइम रा तो बात है
1: थे ऐडा ऑन जा का करिया बीटा बिस्तर बंदा दिया है
0: जाई और कहीं अटर कोई देखा ढोल थाली मार नाच लो कोई हमारे कह नहीं बाजे मार नाचो ना मैं यूं कूद कूद है कोई आंगनो तोड़ दे तो मैं कहा खाना पड़ जी थे पर चाहे एक दिन हावल नंबर लगायो क्या मिश्र नाटो तू थे गदरा दियो आ हुई राम राम
2: राम राम
0: पगे लागू थारे ओ ए देखो इन नंबर लगानो भाई एक दिन दोरे सुनाऊं मैं दोरे
1: ना मद्रास मेल दो या नहीं
2: हम खड़बड़ा तो बजायो मार मगज को
0: खड़बड़ा तो बजायो और करियो थे हज को का कटी जाओ कटी हूं है गोल को
1: राम
2: राम भाई
1: राम राम राम राम भाई वो खड़बड़ा तो थार दाए नहीं आयो
2: होनी कोई होनी बिना बात नहीं बे वो
1: या काकू सर्द गर्म हो गए

0: क्यों कविता भाई तो लगो उठे पड़िया है
1: पड़िया क्यों बिरा जी आए
2: त्यूरी आओ कनी हमें भाई खेतरी चेहरा करा आज आओ इनमें
0: बढ़िया बढ़िया भगवान खूब हम ही चोए एन लीला ले रोए
1: हमें पौड़िए सन्नो साकिर भाई
2: हां काकू सदा न होले
1: एक तो वे टोली एक वे टोली
2: काकू हवा थोड़ी कम आ रही आपरी
1: एक तो वे टोली
0: एक टोली वे एक टोली
2: आवाज
1: कटे
2: काकू आप
1: वाकी कौन कटे भाई उसके जिम्मेदार है राम राम है
3: नवलुबा राम राम आपने भाई साहब कविता भाई साहब ने
1: ओ नवलुबा भाई साहब को जब बात करा दो माने घमसार कर दे।

0: भाई ये जीवड़ो कम कड़पे जड़ो गीत होना वोनी रह कोई बात नहीं मैं बात हम जाके
1: भाई मैं कम करूं थान तो कहिया दूजो होना तो के ओ मर्दानी है
0: हूं मैं का हम के बता देऊ नहीं
1: ठीक
0: बे होना जी जो माल का हूं जी हो रो जी ठीक है दूजो तुम भाई दे के मैं आज के ही है जी को बातड़ी विचार करनी है
1: हम सारी पत्ती नीट उड़ी का
0: हां के गोली मुंह लिया हम
1: सारी पत्ती जानी
0: ठीक है फिर धन ध्यान रखो हां राम राम
1: राम राम
2: तो सा ओहो कार्यक्रम टेम ने नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ दाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। अब से लगाकर दिन में 1:15 तक आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टाइम नए नमस्कार। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार

0: सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी माझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं

रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सके। इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार है शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों का तहे दिल से अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे आपकी अपनी रेडियो सखी ज्योत्सना और
1: हंसा विश्नोई के साथ।

0: तो हंसती मुस्कुराती ज्योत्सना, कैसी हो आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं हंसा जी?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सखियों की तरह। और
1: और गर्मी बहुत है, उफ ये गर्मी।
0: गर्मी तो है, लेकिन ये गर्मी ही है जिसने हमारी छुट्टी करवाई है।
1: बिल्कुल
0: बच्चों की तरफ से हम थोड़े निश्चिंत हुए हैं, और ऐसी छुट्टियों में ये जो बच्चे हैं वो इधर उधर घूमने को जाते हैं, अपने नाना नानी के पास जाते हैं, दादा
1: माँ,
0: दादी के पास जाते हैं।
1: बिल्कुल माँ पहुंच तो जाते हैं पर उनसे सवाल भी बहुत करते हैं, हर चीज में बार बार सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है
0: हाँ, ये जो उत्सुकता है वो उत्सुकता उन्हें बहुत कुछ सिखाती है ज्योत्सना।
1: जी।
0: अच्छा, एक छोटा सा बच्चा था, तो वो जब अपने दादा के पास गया तो बड़े गर्व से बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा, पर आप मुझे एक बात बता दो दादाजी, कि सफल कैसे होते हैं,
1: जी
0: गुर बता दो। तो दादाजी ने सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसको अपने पास, घर के पास जो पौधशाला थी उसमें लेकर गए।
1: अच्छा
0: छोटे छोटे दो पौधे खरीदे वहां से उन्होंने और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक को गमले, एक जो गमला था उसको घर के अंदर रख
1: जी,
0: दिया।
1: फिर बच्चे ने पूछा होगा, इस
0: हाँ
1: पर भी सवाल पूछ लिया होगा।
0: हाँ तो और पूछा, तब जब पूछा कि ये क्या ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में भविष्य में कौन सा पौधा अधिक फलेगा फूलेगा। तो पोता कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर बोला कि दादाजी, ये जो घर के अंदर जो पौधा है ना वो बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा, फलेगा, क्योंकि अब ये देखो ना, बाहर रहेगा तो इसको बहुत खतरा
1: जी
0: रहेगा, लेकिन
1: जी
0: घर के अंदर रहेगा तो इसको खतरा
1: सुरक्षित रहेगा।
0: सुरक्षित रहेगा, और तेज धूप जो आती है, आंधी पानी, जानवर जो भी हो, उसका कोई खतरा नहीं। तो दादी बोलते चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई ज्योत्सना, और जो
1: जी
0: पोता था वो वापस शहर चला गया। इस बीच जो दादाजी थे वो दोनों पौधों में बराबर ध्यान देते रहता है, समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद में एक बार जब वो अपने अपने गांव आया
1: जी
0: बच्चा, तो उसने उसे याद आया, तो उसने बोला फिर से कि आपने मुझसे बोला था कि मैं आपको सफल होने के कुछ गुर बताऊंगा, तो बताइए, अब तो बताना चाहिए, मैं बड़ा भी हो गया हूँ। तो दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उस जगह पर ले गए जहाँ गमले गमले को उन्होंने वहां से पौधा लगाया था।
1: जी
0: बाहर वो पौधा बड़ा खूबसूरत पेड़ बन गया था। तो दादाजी ने कहा, देखो ये वही वाला है। अच्छा, तो आपने अंदर भी कुछ रखा था ना, पोते ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अंदर वाला था वो फला फूला
1: नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: और जो बाहर वाला था वो विशाल वृक्ष बन गया, क्योंकि उसकी जो शाखाएं थी वो दूर तक गई, उसकी जड़ जो थी वो दूर तक रही। इसका
1: स्वतंत्र
0: मतलब
1: थी ना, खुला
0: स्वतंत्र
1: था।
0: थी, और उन्होंने सामना किया ना बाहर वाली परिस्थिति का।
1: बिल्कुल
0: तो इसका मतलब यही हुआ कि आप चुनौतियों का यदि सामना करते हो तो आपके पास लाभ ही
1: लाभ
0: लाभ
1: है।
0: है।

0: हंसा जी, हम बात कर रहे थे अभी गर्मियों की, और तपती हुई गर्मियों में आपने सड़कों पर और कहीं बहुत जगह पर छबील सेवा जरूर देखी होगी।
1: छबील सेवा वही ना जिसमें मीठा शरबत पिलाया
0: जी
1: जाता है।
0: बिल्कुल, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई?
1: नहीं, आप बताएं।
0: जब 1606 ईस्वी में जब लाहौर में सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को तपते हुए तवे पर बिठाया गया और उन पर गरम रेत भी डाली गई और उबलता हुआ पानी भी डाल दिया गया था, तब लेकिन इतनी पीड़ा के बाद भी उन्होंने वाहे गुरु की रजा को स्वीकार करते हुए कहा, तेरा किया मिठा लागे, चाहे सुख हो या दुख या फिर शहीदी ही हो। मतलब उनको था कि जो भी वाहे गुरु करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं, और उसके कारण भले उनकी जान भी चली जाए, वो शहीद भी हो जाए, तो भी वो उसमें गुरु की ही रजा होती है।
1: मतलब इतना सकारात्मक रवैया।
0: जी बिल्कुल। तो गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी को याद करते हुए सिख समाज ने गर्मियों में लोगों को ठंडे पानी और मीठे शरबत पिलाने की सेवा शुरू की, जिसे छबील सेवा कहा जाता है। यह प्यार, सेवा और इंसानियत का पैगाम है, और इस वर्ष गुरु अर्जुन देव जी का 420वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है।
1: जी

जी हाँ सखियों, आज गुरु अर्जुन देव सिख समुदाय के जो प्रथम शहीद हैं उन्हीं के नाम पर शहीदी दिवस है और इस दिन को विभिन्न जो लोग हैं वो विभिन्न धार्मिक आयोजनों और गुरुद्वारों में निशुल्क भोजन वितरण करके इसको मनाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि हमारा जो हम स्वर्ण मंदिर देखने जाते हैं अमृतसर में उसकी स्थापना की पहल इन्होंने ही की थी, साथ में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी इन्होंने किया था। अर्जुन जी एक उत्कृष्ट कलाकार थे और समानता के प्रबल समर्थक थे।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: हंसा जी, हम अपनी सखियों को बताएं कि आज एक विशेष दिन भी है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और जब हम भोजन में प्रेम, इमेजिनेशन और हुनर के साथ तैयार करते हैं तो वो पाक कला का रूप ले लेता है।
1: तो आज पाक कला दिवस।
0: बिल्कुल, हर साल 18 जून को पाक कला दिवस मनाया जाता है। ये दिन रसोइयों, गृहिणियों, शेफ्स और उन सभी लोगों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है जो अपने हाथों से स्वाद से जीवन में मिठास घोल देते हैं।
1: और फिर जब इतनी तेजी से जो हमारी जीवन शैली बदल रही है उसमें हम स्वस्थ रहेंगे एक चुनौती है। इसके लिए इन दिनों हम बहुत एक कॉमन शब्द सुनते हैं, मिलेट्स,
0: है ना,
1: जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है। तो इसी विषय पर आज हमने एक वार्ता रखी है अपनी सखियों के लिए। श्रीमती गायत्री खेतावत जो मिलेट्स पर आपको बताएंगी, और बता दें कि गायत्री जी जो है वो पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्यवर्धक खान पान से संबंधित सेमिनारों और कार्यशालाओं से जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुने।
2: आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका के समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे अवसर मिला। भारत सरकार ने 2023 में मिलेट की विशेषताओं को देखते हुए इसका श्री अन्न नाम दिया। मिलेट सुपर फूड है, वह हमारा पारंपरिक आहार भी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसके नियमित सेवन से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है तथा जीवन शैली संबंधी रोगों को कम करने में भी इसके सेवन से बहुत सहायता मिलती है। हमारे पूर्वज भी अपने दैनिक जीवन में श्री अन्न का उपयोग करते थे, इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण हमारी बदलती जीवन शैली और गलत खान पान की आदतें हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज असंतुलन, हार्मोनल असंतुलन तथा आंतों में सूक्ष्म जीवों का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में हम जिन प्रमुख अनाजों का अधिक सेवन कर रहे हैं, जैसे गेहूं, चावल, मैदा, ये भी इसके मुख्य कारण हैं। गेहूं और चावल की बात करें तो इसमें रेशा बहुत कम होता है व गेहूं में ग्लूटेन भी बहुत अधिक होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमें अपने दैनिक आहार में श्री अन्न को शामिल करना चाहिए। श्री अन्न में रेशे की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें ग्लूटेन नहीं के बराबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसकी बाहरी परत लिग्नान्स की होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और इसके नियमित सेवन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की संरचना ऐसी होती है कि इनके सेवन से ग्लूकोज बहुत धीमे धीमे बनता है और इस कारण ग्लूकोज का जमाव भी नहीं होता है। मिलेट पोषक तत्वों का भंडार है, इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा तथा त्वचा संबंधी बीमारियों में भी हमें बहुत फायदा मिलता है। श्री अन्न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनको उगाने में पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए व कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। श्री अन्न को पकाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अनपॉलिश्ड श्री अन्न या मिलेट खरीदना चाहिए। अनपॉलिश्ड की पहचान, उन सब के अलग अलग रंग होते हैं और उनमें एक काला डॉट होता है। एकदम पॉलिश साफ सुथरा मिलेट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा, कोई भी मिलेट्स को हमको 6 से 8 घंटे भिगोकर ही पकाना है, अन्यथा वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। वह मिलेट्स को प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, खुले बर्तन में धीमी आंच में पकाने से वह हम संपूर्ण फायदा देते हैं। हमें अपने खाने में सभी प्रकार के मिलेट्स को शामिल करना चाहिए। ये बहुत तरह के होते हैं जिसमें मुख्य रूप से पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और सूडो मिलेट्स हैं। पॉजिटिव मिलेट्स की बात करें तो ये 5 तरह के शामिल किए गए हैं जिनके मुख्य नाम सावा, कोदो, कंगनी, कुटकी और हरी कंगनी है। इसके इंग्लिश नाम भी बहुत प्रचलन में है जो कि इस प्रकार है, बर्नयार्ड मिलेट,

0: कोडो मिलेट्स फॉक्सटेल मिलेट लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट इसके अतिरिक्त हम लोग अपने दैनिक जीवन में बाजरा जवार रागी तथा मक्का खाते हैं वो भी मोटा अनाज है इनको न्यूट्रल मिलेट भी कहते हैं वो व्रत के दौरान हम जो राजगिरा कुट्टू खाते हैं उनको सूडो मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं वो किनोवा भी सूडो मिलेट्स की श्रेणी में रखा गया है हमें अपने दैनिक जीवन में इन सब अनाज का बदल बदल के उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं मिलेट से हम अनेक प्रकार के पारंपरिक तथा आधुनिक व्यंजन बना सकते हैं मिलेट्स खिचड़ी मिलेट्स चीला मिलेट्स पुलाव मिलेट्स खीर आदि डोसा इडली उत्तपम सूप ढोकला मिलेट्स पॉरेज मिलेट्स स्मूदी मिलेट्स कुकीज मिलेट्स सलाद और इसके साथ साथ थाई करी में चावल की जगह भी हम मिलेट्स को काम में ले सकते हैं मिलेट्स श्रीखंड भी बहुत अच्छा बनता है जिसकी विधि मैं आपके साथ शेयर करूं इसके लिए हमें चौथाई कप कंगनी दो कप बंधा हुआ दही आधा कप पीसी हुई चीनी दो चम्मच क्रीम चार पांच धागे केसर और पिस्ता बादाम इलायची सजावट के लिए चाहिए इसको बनाने के लिए कंगनी को धोकर 6 से 8 घंटे भिगो दें अब इसको मिक्सी में पीस कर धीमी आंच में उबाल लें जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें अब एक बड़े बर्तन में बंधा हुआ दही पीसी हुई चीनी और क्रीम मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें केसर को थोड़े से गुनगुने दूध में भिगोकर दही के मिश्रण में मिला दें अब ठंडी की हुई कंगनी का मिश्रण भी इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और थोड़ा सा फेंट लें तैयार श्रीखंड को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें परोसने से पहले पिस्ता बादाम और इलायची से सजाएं यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक भी है तो आप इसको बना के अच्छे से खाएं तो आपने देखा कि मिलेट्स न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है बल्कि उनसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अनेक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं इसलिए अपने खान पान में मिलेट्स श्री अन्न को अधिक से अधिक शामिल करें इससे हमें संतुलित पोषण प्राप्त होगा और जीवन शैली से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाव में भी सहायता मिलेगी तथा हमारा स्वास्थ्य वर्तमान और भविष्य दोनों में बेहतर बना रहेगा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मिलेट्स को अपनी थाली का नियमित हिस्सा बनाएं।
1: सखियों अभी हम सुन रहे थे श्री अन्न मिलेट्स पर वार्ता वार्ताकार थी श्रीमती गायत्री खेतावत आइए मधुर गीत

0: रोटी पाने का दर्द वो ही बता सकता है ज्योत्सना, जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है।
1: जी
0: शैलेंद्र जी ने कितनी गहरी बात कही है इस गीत में।
1: बिल्कुल, और भोजन हमारी जीवन शैली का भी दर्पण है, हमारी परंपराओं का भी दर्पण है, और सारी हम साथ में हमारी संस्कृति का भी दर्पण है। भोजन में हंसा जी पत्तियों का यूज भी होता है, जड़ों का भी होता है, सब्जियों का भी होता है, फल मसाले दूध से बनी चीजें इन सब का, और खासकर जल का भी
0: वो तो
1: हिस्सा
0: है ही।
1: है।
0: देखो
1: पर
0: इंसान जो है ना,
1: जी
0: हम इंसान बड़ा खोजी प्रवृत्ति का होता है,
1: जी
0: उसने हर चीज का उपयोग जाना है
1: बिल्कुल खोज
0: तो
1: लिया
0: खोज लिया है, उसने जो भी उसके सामने उसने देखा है कि इस चीज से हम क्या अच्छा पा सकते हैं।
1: इसी खोजबीन के दौरान थोड़े दिन पहले ही मेरे पास भी ये खोज आई कि हम फूलों को भी भोजन का हिस्सा
0: हाँ
1: बना
0: हाँ
1: सकते
0: है ना।
1: हैं। उनकी बात करें फूलों की, तो वो भोजन का हिस्सा बनकर उनकी खुशबू, स्वाद, रंग और पोषण को बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए खुशबू की, तो सबसे पहले मन में आता है गुलाब का फूल।
0: गुलाब क्या नहीं बनता उस गुलाब से।
1: बिल्कुल
0: गुलाब का जो इत्र था ना, वो भी कुछ
1: जी
0: ऐसे ही बना था, उसका उसका जो इजाद हुआ था वो भी कुछ ऐसे हुआ था कि वो पानी में
1: जा रहा होता
0: जा रहा
1: है।
0: होता था और वहां उस एरिया से उस क्षेत्र से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी। तो इस तरह से गुलाब से हम बहुत सारी चीजें इंसान ने बनाना सीखा। तो गुलकंद तो है ही,
1: जी
0: उसके अलावा कई तरह के शरबत होते हैं, हम पीते ही हैं इन
1: बिल्कुल
0: गर्मियों में, केक में भी और मिठाई में भी इस गुलाब का इस्तेमाल
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: जी, स्वाद भी बढ़ जाता है, रंग भी और खुशबू भी। और ऐसा ही फूल एक चमेली का फूल है, अगर
0: वो भी
1: किसी भी
0: खुशबूदार है।
1: बिल्कुल किसी भी पेय पदार्थ में डाला जाए तो उसकी महक और भी बढ़ा देता है। और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, उससे जो हम उसको जब हम खाते हैं, तो विटामिन डी का वो अच्छा स्रोत भी बन जाता है। और एक और फूल है जो शायद सखियों को नहीं पता होगा, गेंदे का फूल। हम उसको पूजा में तो इस्तेमाल करते ही हैं, हम उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: इसे सुखा के, ड्राई करके, इस गेंदे की पंखुड़ियां अगर सलाद में, यानी ड्राई डस्ट के तौर पर अगर यूज की जाए, सजावट के लिए काम आती हैं।
0: अच्छा वैसे तो अभी तक तो ये था कि जो फूल हैं अगरबत्तियों में और जो धूप
1: भीनी
0: सामग्री
1: भीनी
0: होती है,
1: खुशबू सलाद में भी दे
0: हाँ
1: देता है।
0: सलाद में भी देते हैं, बहुत अच्छा।
1: और फूलों से चाय भी बनती है, अगर हम चाय भी बनती है और रंग भी देते हैं। अगर बात करें गुड़हल के फूल की, तो वो लाल रंग देता है। अपराजिता का फूल, जिसे बटरफ्लाई पी फ्लावर कहा जाता है,
0: नीला रंग का।
1: बिल्कुल नीला रंग देता है। वहीं पारिजात अर्थात हर श्रृंगार का फूल, जिसकी डंठल जो पीछे से केसरिया रंग की होती है, अगर उसकी चाय पी जाए तो वो गोल्डन वाटर के तौर पर जानी जाती है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो। अच्छा
1: और
0: मैं भी अब तुम्हें बताऊं,
1: जी जी जी जी
0: जो कद्दू लौकी के जो फूल होते हैं,
1: हाँ जी
0: केले के जो फूल होते हैं,
1: जी
0: और सहजन जिसको मोरिंगा कहते हैं, उसके भी जो फूल होते हैं उनके पकोड़े बनते हैं।
1: मानसून दस्तक देने वाला है आंसर जी।
0: बिल्कुल सही। और

0: बहुत सहजन तो ऐसा कहते हैं कि उसमें हर चीज़ है, उसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो सर्व गुण संपन्न
1: बिल्कुल
0: है ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है, और बहुत आराम से लगता है। सखियां चाहें तो अपने घर के बाहर इसकी कहीं से भी कोई शाखा मिल जाए तो इस मानसून में यदि आप उसे रोपते हैं तो बहुत आसानी से लगता है। इसकी फलियां का इस्तेमाल तो हम सब
1: जी
0: जानती हैं
1: ड्रमस्टिक्स
0: कढ़ी
1: के रूप
0: में,
1: में
0: हाँ,
1: जी
0: लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं और इसके जो फूल होते हैं छोटे
1: जी
0: छोटे,
1: जी
0: उनके सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, और लौकी के पत्तों, लौकी के फूलों की भी बहुत अच्छे से खाई
1: जी
0: जाती है। छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़
1: जी
0: वाला जो
1: जी जी
0: इलाका है, झारखंड छत्तीसगढ़, वहां पर ये बहुत इस्तेमाल होता है। केला जो है वो साउथ इंडिया
1: साउथ इंडिया का
0: में
1: है
0: ऐसा इस्तेमाल होता है।
1: जी। और एक बहुत ही नायाब फूल है जिस जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही रिलैक्सिंग मूड देता है। जब भी हम थकानवट महसूस करते हैं या थके हुए हैं तो उसकी चाय अगर हम बनाकर पी सकते हैं। उसका नाम है कैमोमाइल का फूल।
0: अच्छा,
1: बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद फूल होता है, उसको भी हम चाय में डाल के पी सकते हैं।
0: चलिए, हाँ
1: और
0: हाँ अब एक प्यारे से गीत की तरफ
1: जी
0: चले।
1: बिल्कुल

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सर क्यों आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी वाटिका, हम हैं आपके साथ हंसा और ज्योत्सना।
4: बात कर रहे थे भोजन की और रसोई की, रसोइयों को सम्मान देने की। तो जब रसोई की बात आती है तो मन में आता है कि रसोई तब है जब रसोई में रस है।
3: बिल्कुल, रस से रसोई शब्द बना है।
4: रसोई में बनने वाले व्यंजन में केवल मसालों की खुशबू ही नहीं होती हंसा जी, भोजन बनाने वाले का स्नेह, परिवार की खुशियाँ, दादी नानी की पुरानी रेसिपीज की यादें और त्योहारों की मिठास के रस भी घुले होते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होते हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त और कषाया रस।
3: तिक्त रस, कड़वा स्वाद वाला। तो ये जो तिक्त रस है उस पे आज हम बात करते हैं। सखियों, ये तिक्त रस जो होता है वो हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है।
4: बिल्कुल,
3: हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको सुधारने का काम करता है और हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है पाचन तंत्र की। तो वो देखिए, वो चीजें जो हमारे बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें तिक्त रस होता है,
4: मुंह बनाते हैं,
3: करेला खाना नहीं चाहते, मेथी खाना नहीं चाहते, गिलोय जैसी चीजें नहीं पीना चाहते जो भी होती हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी तो वो मुंह बनाते हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: तो जो हम जो उन जो जीभ को स्वाद नहीं लगता, जीभ में मधुरता नहीं घोलता है, वो रस होता है तिक्त रस।
4: पर बच्चों को बताना भी जरूरी है कि मौसम बदलता है तो हमारी शरीर की जरूरतें भी बदलती है और उस हिसाब से हमारी थाली का स्वाद भी बदलता है,
3: अपने आप बदलता है। क्योंकि देखो ना, जिस मौसम में जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो तभी फलती फूलती है। मतलब प्रकृति ने मनुष्य के साथ इतना अच्छा सामंजस्य बैठा है कि जब हम इन सारी चीजों को जोड़ कर देखते हैं तब हमें पता चलता है।
4: बिल्कुल, बैलेंस है, योग है उसके अंदर। और हमारा भारत तो अनेकताओं में एकता का देश है, तो जब कड़वे की बात आती है तो जगह जगह तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही होता है। जैसे हम गुड़ी पाड़वा के दिन नीम का खाते हैं, हम नवरात्रि जो आती है अप्रैल वाली जो नवरात्रि उसमें भी नीम का पत्तियां कोपले खाते हैं ताकि हमारा जो मौसम बदल रहा है उसके साथ साथ हम बदलते जाएं। उसी तरह से हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग चीजें हैं। अरुणाचल में बांस के कोपले हैं, उत्तराखंड में बिछुआ बूटी है, मेघालय में कंटोला और उसकी पत्तियां खाई जाती हैं, कोंकण में अनार के छिलकों वाली चटनी खाई जाती है, दक्षिण भारत में नीम के फूल और गुजरात और हमारे राजस्थान में नीम की कोमल पत्तियां खाई जाती हैं। और जिससे बच्चे मुंह बनाते हैं उनको आजकल ग्लोबल वेलनेस में बिटर फूड्स के नाम से जाना जाता है। तो सखियों, मीठे की आदत के बीच थोड़ा सा कड़वा भी अपनाइए क्योंकि जिंदगी का फलसफा भी यही है कि हर कड़वी चीज नुकसान नहीं करती, कुछ कड़वाटे सेहत में मिठास भी घोल देती हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम मेथी की बात करते हैं ना तो वो कफ और पित्त का संतुलन करती है। आप हम जानते हैं बालों के लिए, त्वचा के लिए और जो जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो रामबाण होती है। करेला भी यही गुण करता है।
4: बिल्कुल।
3: और हल्दी जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं वो भी हर चीज में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हर सब्जी में हम उसको डालते हैं।
4: यहाँ तक उसको अगर हम उगाते भी हैं तो भी वो एंटीसेप्टिक का काम करती है।
3: और हमारे राजस्थान में तो हल्दी हर तरह से खाई जाती
4: जी,
3: है ना, गीली हल्दी भी खाई जाती है। तो आयुर्वेद में इन सब का बहुत महत्व है और ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ सावधानी भी इसमें कहता है आयुर्वेद कि शरीर में ज्यादा इनका सेवन नहीं करना
4: अति नहीं होनी चाहिए
3: ना। उससे क्या होता है कि रूखापन आता है, चक्कर जैसे, थकान जैसे, और जहाँ वात रोग जिसको होता है वो बढ़ जाता है। तो बस ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें और इनका जरूर सेवन करें।
5: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब।

0: से लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने ज्योत्सना। और आज का दिन 18 जून हम याद करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उनको समर्पित है, उनको याद का दिन है उनकी। और झांसी की बाई रानी को कौन नहीं जानता, 1857 की क्रांति की वीरांगना, महज 29 वर्ष की आयु में देश के लिए वीरगति को पाने वाली महिला और हमारी भारतीय राष्ट्रवाद की सशक्त प्रतीक लक्ष्मीबाई।
1: बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा है, एक साहस है स्वतंत्रता की और अटूट देशभक्ति की।
0: इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, बहुत कम उम्र में ही गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ, झांसी के राजा से। असल में इनका नाम तो मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद में नाम परिवर्तन का एक रिवाज है, तो इस तरह से उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। और उस समय की जो नीति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो धीरे धीरे मतलब अंग्रेज सरकार इस ओर बढ़ रही थी कि हम यहाँ पर इन राज्यों को किसी तरह से हड़प लें। तो उन्होंने उसमें हड़प नीति के चलते ही उन्होंने, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था और
1: लीगल हेयर होना जरूरी था,
0: तो इन्होंने दत्तक जो इनका पुत्र था उसको उन्होंने माना नहीं और इस तरह से हड़पना चाहा। तो डलहौजी के विरोध में इन्होंने जो 57 की क्रांति हुई थी उसमें अपना सहयोग दिया।
1: वो कहती थी कि मैं इनको झांसी नहीं दूंगी, और उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, संकल्प था, और उन्होंने उस संकल्प को मरते दम तक निभाया।
0: बिल्कुल सही। और कालपी युद्ध में जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया, वहाँ पर घमासान युद्ध किया, और कहा जाता है कि उस समय जो स्थिति थी करो या मरो वाली स्थिति थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने, कोई कह नहीं सकता था कि एक महिला इतना इतने यश के साथ, इतनी वीरता के साथ युद्ध कर सकती है। और इसी यही कारण है कि आज हम उनके शौर्य का यशोगान करते हैं, हर भारतवासी करता है, उनकी वीरता को नमन करते हुए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है कालजयी कविता है और

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: इतना प्यारा सा गीत था फिल्म लड़की सहयाद्री का, भरत व्यास जी ने जिसको लिखा था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर था। तो जैसे हम इन्हें याद कर रहे हैं वैसे ही आज एक और महापुरुष को हम याद कर रहे हैं जिनका नाम है मिल्खा सिंह, जिन्हें उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं।
4: बिल्कुल,
3: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध भारतीय धावक जिन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं।
4: सन 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। वे पदक से कुछ क्षण ही दूर रह गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन भारतीय खेल इतिहास में सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिना जाता है। मिल्खा सिंह केवल एक महान धावक ही नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण का साथ हो। हम भी मिल्खा सिंह के जीवन से ये सीख ले सकते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत और कदम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।

0: आप इसमें रंग में रंगी रहें, समाज में खूब सम्मान पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी भाव से हम अनुमति लेते हैं।
1: और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया HPT से विक्रम सिंह भाटी और राय सिंह राव ने, कंट्रोल रूम से दिलीप सिंह परमार और FM से प्रवीण कुमार ने।
0: कंसोल पर हमारे साथ थे कपिल चारण जी और हमारे इस कार्यक्रम की परिकल्पना संयोजन किया मनीष सोलंकी ने। हम थे आपके साथ हंसा विष्णु
1: और ज्योत्सना।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के राय रंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे

0: हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाए और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की

0: सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और

0: सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम दो दिल।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी, तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की, एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई, खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या फ्रिज कर रखना है, किसी

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार. हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं.
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार.
0: अब बताते हैं कि भाई

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में, और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी, और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही, और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं।

0: को संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो, पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है
0: जी।
1: तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रूपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो आकाश जी
1: श्रेणी की कलाकार थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया
1: जी। और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डर और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग

0: आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती है जिन्हें सेकेंड या थर्ड में कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे, वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए, बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं, आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता, और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा, और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है. और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है. सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है.
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अभी तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने. और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय

0: नहीं होता। त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो। तो
1: बिल्कुल,
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत सारे
0: है।
1: लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल, और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया।
0: जी
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लाल जी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
4: लाल जी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लाल जी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन
1: गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पति है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीजें खराब ही आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो उनको कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदे, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें

0: सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
0: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं।

0: है जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
1: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
0: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
1: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
0: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
1: है, ये तो है
0: ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
1: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
1: अच्छा।
0: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
1: जी। बिल्कुल,
0: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
1: बहुत जरूरी।
0: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
1: तो है।
0: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर, पालक, इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन अगर मलाई

0: से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का.
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत.
1: नमस्कार, नमस्कार. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
2: सखी सहेली.

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गाँव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए मैम इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

0: पर नहीं नहीं पसंद नहीं है मेरे।
1: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी

0: गर्मी भी है तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी
0: है।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान वो जी आपको पता है ये पहलगाम हाँ, कश्मीर में पड़ता।
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन मुस्लिम का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ,
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाल
1: वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वाल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बाल 3 बाल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब, तो सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से 20 भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और हाँ, मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम समा, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, एकदम बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लता हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलेंगे।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ये है, तो
1: बिल्कुल जी मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिससे बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है। और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ, यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता
1: होगा। ममता जी, हम प्रकृति के अंदर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो वो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे हैं और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने,

0: जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहां पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहां पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, हाँ। जैसे झील है तालाब है वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपनी बेटी के को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है।

0: यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल पहले आम
1: कोई खा रहे
0: हैं। लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
1: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
0: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ
1: जी।
0: आम खाने के लिए वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए
1: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
0: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
1: आम का जो बाग है बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
0: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होके एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
1: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज?

0: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और इसी परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना है ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
1: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
0: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
1: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाए जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
0: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
0: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ करता था।
0: दादी लोग कहाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
1: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
0: जी जी,
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

है कि आगामी दो माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा वाणी।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा वाणी।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और जी कैसे हैं आपके हालचाल और उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और होंगे भी क्यों नहीं भैया। देखिए जोधपुर में वैसे भी गर्मी ने जो है ना सबके हाल बुरे कर ही दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भैया क्योंकि आपने 5 बज गए हैं, शाम हो गई है, थोड़ा सा जो है एनवायरमेंट अब थोड़ा शांत होगा, ठंडक फाइनली आने वाली है और गीतों वाली ठंडक जो है ना वो भी आने वाली है क्योंकि 5 बज गए, 5 बजते ही हम लेके आ जाते हैं आपका फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी। और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित और आज मेरे साथ है
1: और दोस्तों मैं हूँ आयुषी। तो दोस्तों आपके लिए एंटरटेनमेंट की गारंटी तो हमारी है, लेकिन फिर भी अभी हम आपकी इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस आने वाले प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक से।

0: कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे युवा पसंद कार्यक्रम युवानी, और जब युवानी सुनते हैं और युवाओं से हम लोग बात नहीं करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए एक युवा चैंपियन हमारे साथ है जो कि योगासना करते हैं, जो कि योगा करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, जिनका नाम है अंजलि बिश्नोई। तो आइए इनकी भेंटवार्ता सुनाते हैं जो कि ली है राहुल ने। तो आइए इनकी और राहुल की बातचीत सुनते हैं।
1: कार्यक्रम युवाणी में आपका आज फिर से स्वागत है और प्रोग्राम युवाणी चल रहा है। हर बार कुछ नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, आज फिर नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि बिश्नोई के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेशनल असम प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है योगासना चैंपियनशिप में। 2025 बिहार खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और एशियन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम ये कर चुकी है। अंजलि बिश्नोई आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंजलि, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा नाम अंजलि बिश्नोई है, मैं गांव बुद्ध नगर है मेरा, मैं जोधपुर से ही हूँ। मेरे पापा का नाम प्रकाश जी है।
1: अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत कब हुई, योगा कब शुरू हुआ, कैसे आपको लगा कि मुझे शुरू कर देना चाहिए?
2: सर, योगा मेरा भाई करता था नॉर्मली योगा, पापा उसको प्रैक्टिस करवाते थे बहुत ही लाइटली, और फिर पापा और मेरे नाना जी उसको बाहर हमारे मंदिर लेके गए थे, विष्णु समाज का मंदिर है जाजीवाल, तो उधर गुरुजी को बताए थे ऋतिक ने 2-3 आसन, तो गुरुजी ने योगा जुड़ने का बोला था, उन्होंने कोई जगह बताई थी उधर योगा ज्वाइन किया।
1: इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको योग करने की, मतलब
2: भाई से?
1: भाई से क्या करते हैं भाई आपके, उनके बारे में बताइए।
2: भाई योगा करता है खुद, उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ मैं भी उधर जाऊं। पहले तो मैंने ऐसे ही खेल के, मतलब ऐसे ही खेलना है उसे, बच्चों से मिलना उधर, फिर धीरे धीरे योगा से जुड़ गए उधर ही।
1: ओके, तो आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती हैं अब योगासन के साथ साथ?
2: योगासन के साथ साथ अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
1: अच्छा, मतलब क्या सब्जेक्ट लिया है आपने?
2: मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, आर्ट्स है मेरी।
1: अच्छा ठीक है।

0: आगे बढ़ेंगे, मैं जानना चाहूंगा आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगी है?
1: मेरे को मेरा एशियन का मेडल, मैंने एशियन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं।
0: ओहो, और उसके अलावा क्या क्या, आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया आपने?
1: असम में हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था आर्टिस्टिक पेयर में, जिसमें मेरा सिल्वर लगा था मेरे पेयर पार्टनर का। फिर हमने बिहार हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें मेरा ब्रॉन्ज लगा था, और सबसे बड़ा मेडल था मेरा एशियन में 2 गोल्ड मेडल जीते।
0: ओके, पहली बार कहाँ पार्टिसिपेट किया था आपने?
1: डिस्ट्रिक्ट हुआ था जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया था मैंने।
0: तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ लगा?
1: सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरे को एशियन का लगा था।
0: क्या फर्क था, आपने डिस्ट्रिक्ट भी खेला, आपने असम में भी जाके खेले, आपने बिहार में खेले, इंडिया में पार्टिसिपेट किया, फिर एशिया में आपने गोल्ड मेडल जीता, तो क्या वहाँ की अलग बात थी?
1: एशियन में ये था कि बाहर के जो स्टेट के बच्चे थे

0: क्या कर सर, हमारा कुछ दर्द कर रहा है तो हम फिजियो की क्लास लेने गए। अभी तो क्लास चल रही है सर, बस 2 मिनट में जा रहे हैं। सर को उधर भेजा तो आगे देखा तो मिश्रा सर हमारी क्लास ले रहे हैं। अभी उधर डर लगे, उधर जाए तो सर बोले लेट क्यों आए, तो हमने उस क्लास से बंक मारा, बड़े छिपके गए थे।
1: तो बंक मारने वाला भी, मतलब आपने वो सिलसिला वहां भी कर लिया है,
0: कर लिया।
1: क्या योग से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है?
0: टीवी वगैरह में देखते हैं, रामदेव बाबा को देखते हैं टीवी पे, या सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पे योगा वगैरह सब वायरल है। अभी योगा योगासन बन गया है।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगा, पढ़ाई और योग के बीच का बैलेंस आप किस तरह से देखते हैं?
0: पढ़ाई पढ़ाई दिन में हो जाती है, प्रैक्टिस सुबह शाम अपना टाइम निकालना पड़ता है, तो सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हो, दिन में पढ़ाई वगैरह अदर काम करते हैं।
1: ओके, फैमिली और कोच का सपोर्ट किस तरह से देखते हैं आप अपने इस लाइफ में, इस पूरी जर्नी में?
0: सर कोच का तो हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि इवेंट आया, बच्चों आओ प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। जब प्रैक्टिस कर रहे तो बड़ा जोर आता है, हाँ सर क्यों बुला रहे, बस अभी सोना है दिन में। तो सर का वो ऐसे डर रहता है, हाँ सर ने बोला अब जाना भी है, तो सर क्लास लेते हैं, सर स्टॉपवॉच लेके सर पास में खड़े रहते हैं। जब प्रैक्टिस करते सर का बहुत मूड एकदम सीरियस होता है कि अभी हमें ये खा ही जाएंगे, बट सर जब हम प्रैक्टिस करवा के रहते हैं तो हाँ उस टाइम शाबाशी मिलते हैं, हाँ ये तूने एक चीज सही की है, ये चीज तूने गलत की है, वो अच्छा लगता है।
1: कुछ फनी चीजें भी होती है प्रैक्टिस के दौरान, क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है?
0: नहीं, फनी चीजें होती है, हम आसन में कोई बंदा आसन कर रहा है तो उसको नीचे गिराना है, कैसे गिरा है उसको डराना है कि वो क्या कर रहा है, ऐसा रहता है, उसको गिराने का रहता है कि उसको सर उधर देख रहे इसको गिरा देते हैं बस।
1: ओके ओके, कोच साहब से मिली अब तक की सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगती है?
0: सर हमें जब प्रैक्टिस कर रहा था अपने आप को घिसो, जितना घिसोगे उतना मेडल आएगा। अब सोच लो अभी इधर घसना है उधर परफॉर्मेंस देनी है।
1: आपको क्या लगता है युवाओं के लिए योग क्यों जरूरी है?
0: युवाओं के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम ये चीज करें
1: और स्वास्थ्य के साथ साथ अब तो जो कि आप इस खेल में भी आगे जा सकते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं योगासना के गेम्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य बनाने के साथ साथ आप अच्छे लेवल पर भी अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। ओके अंजलि, बातचीत में आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको बताना भी चाहूंगा कि भाई योग ऐसा गेम है ना जहाँ हमें कुछ ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, और भी कई सारे ऐसे खेल हैं जहाँ हमें महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सीखना भी पड़ता है, लेकिन योग एक ऐसा खेल है ना जहाँ आपको सिर्फ अपना माइंडसेट एकाग्र करना है और इस खेल में अपने आपको पूरी तरह से झोंकने बिना किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ अपने दिमाग लगाना है, अपने आपको एकाग्रता से इस खेल में अपने आपको बनाए रखना है, ठीक है? तो ऐसे में जो लोग गांव से हैं, दूर दराज से, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए योग कितना जरूरी है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
0: उनके लिए योग तो एक स्वास्थ्य के लिए चीज हो गई कि वो योगा करे तो स्वस्थ भी रह सकते हैं, और योगा के लिए कुछ भारी किट नहीं चाहिए होता है, अपने कॉस्ट्यूम होते हैं उस कॉस्ट्यूम, और हम घर पे भी कर सकते हैं, दरी बिछाई योगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि योगा बूढ़े लोग ही करते हैं, योगा जवान लोग, ये योगासन से योगा योगासन बन गया है।
1: और योगासन आजकल आप जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, कई सारे आपके पास साधन है, उन्हें देख भी आप सीख सकते हैं, है ना? आपने योग कहाँ से सीखा? सबसे पहला आपने योग सीखना कहाँ से शुरू किया था?
0: योगा सीखना मैंने यशदीप सर और गजराज सर से सीखा है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है।
1: अच्छा, उन्होंने प्रेरित किया आपको, ठीक है। बातचीत में आगे बढ़ेंगे, जाते जाते एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलने वाले हैं, उसमें आपको इंस्टेंट जवाब देना है, ठीक है? तैयार हैं आप उसके लिए?
0: जी सर।
1: ओके, तो तैयार है रैपिड फायर के लिए आपका पहला सवाल, चाय या फिर कॉफी?
0: दोनों ही नहीं।
1: सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक जागना?
0: सुबह जल्दी उठना।
1: ओके, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम?
0: सूर्य नमस्कार।
1: मेडल या फिर ट्रॉफी?
0: मेडल।
1: योग मैट का पसंदीदा रंग आपका?
0: रेड।
1: पसंदीदा योगासन?
0: वामदेव त्रिपुरासन।
1: सबसे कठिन योगासन?
0: डिम्बासन।
1: पसंदीदा खिलाड़ी?
0: रितिक।
1: ओके, भाई कोई?
0: जी, उसके आसन देख के ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा आसन करना है, तो उसको देख के
1: मतलब पूरा फ्लेक्सिबल होगा वो, तो पूरा एकदम सब कुछ कर लेता है, रबड़ जैसा। आपके मोबाइल या फिर किताब?
0: किताब।
1: ठीक है, छुट्टियां कहाँ, पहाड़ों में बिताना पसंद करेंगे, समुद्र के किनारे?
0: दोनों जगह।
1: घर पे?
0: गाँव।
1: अच्छा, अपने गाँव में। ओह क्या बात है। योग को एक शब्द में किस तरह से डिफाइन करोगे आप?
0: करो योग, रहो निरोग।
1: क्या बात है। अगर योग में चैंपियन नहीं होते, इस फील्ड में नहीं होते, तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? और
0: पढ़ाई।
1: और सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति आपको कौन लगता है?
0: पापा।
1: अपने कोच के लिए कोई एक शब्द?
0: कोच। भैया।
1: भैया। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं? आप?
0: पापा।
1: अरे वाह। और नेक्स्ट टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है?
0: वर्ल्ड योगा में मेडल लेकर।
1: क्या बात। अंजलि विष्णु हमारे साथ बनी हुई थी प्रोग्राम युवाणी में, कई सारे मेडल इन्होंने अपने नाम करे हैं, जिसमें एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि युववाणी चल रहा है, और अगर युववाणी चल रहा है तो इसके गुरुवार में कुछ ना कुछ सरप्राइज जो है हम जरूर लेके आएंगे। तो अगर आज के सरप्राइज की बात करें तो वो है एक और कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम कहानी लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है रुकना भी जरूरी है, जिसका वाचन किया है रोहित और आयुषी ने। तो चलिए फिर सुनते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
4: श्रोता, आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी, और थर्सडे यानी गुरुवार स्पेशल में कहानी एक हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और इसी के साथ एक और कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है रुकना भी जरूरी है। शहर के एक कोने में एक छोटा सा पार्क था। लोग रोज वहां से गुजरते थे पर रुकता कोई नहीं था।
3: उसी पार्क में एक बूढ़ा माली रहता था। वो रोज पौधों को सींचता, घंटों मिट्टी से बात करता।
4: लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए, कल ये पौधे सूख भी सकते हैं।
3: माली बस मुस्कुरा देता, वो जानता था हर बीज को वक्त चाहिए।
4: एक दिन वहाँ एक युवक आया भागता हुआ, परेशान थका हुआ।
3: वो बोला, जिंदगी दौड़ बन गई है पर मंजिल नजर नहीं आती।
4: माली ने उसे एक बेंच पर बैठाया, कहा पहले रुकना सीखो।
3: युवक चौंका, उसने कहा रुकूंगा तो पीछे रह जाऊंगा।
4: माली ने जमीन दिखाई, कहा बीज रुकता है तभी तो पेड़ बनता है।
3: युवक रोज आने लगा, पहले 5 मिनट फिर आधा घंटा।
4: उसने देखना शुरू किया, धीरे बढ़ते पौधे, शांत हवा और खुद की बेचैनी।
3: कुछ हफ्तों में उसकी आंखों का बोझ हल्का होने लगा।
4: काम में गलती कम हुई, सोच साफ हुई।
3: एक दिन युवक बोला, अब समझ आया रुकना हार नहीं है।
4: माली मुस्कुराया, कहा जो सही वक्त पर रुकता है वही सही दिशा में चलता है।
3: कई साल बाद पार्क हरा भरा हो गया।
4: लोग अब वहाँ रुकते थे, सांस लेते थे, मुस्कुराते थे।
3: माली नहीं रहा पर उसकी सीख हर पेड़ में थी
4: कि जिंदगी में भागना जरूरी है पर कभी कभी रुकना उससे भी ज्यादा। श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हर पल दौड़ता है वो खुद को खो देता है,
3: और जो कभी कभी रुकता है वो खुद को पा लेता है।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने कहानी सुनी जिसका शीर्षक था रुकना भी जरूरी है, जिसको सुनाया था हम दोनों ने, यानी कि मैं आपकी दोस्त आयुषी और मेरे साथ है।
1: बिल्कुल, मैं था आपके साथ, आपका रेडियो राकेश रोहित। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं, अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE5 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार देश भर में विभिन्न एम्स संस्थानों और केंद्र सरकार के मेडिकल संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1484 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा CBT परीक्षा का आयोजन 25 से 27 जुलाई के बीच किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, 1484। आवेदन जो है वो 13 जून को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जो कि 30 जून तक लास्ट डेट रहेगी। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट फिर से एक बार बता देता हूँ, aimsexams.ac.in आपकी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगी।

0: इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का कार्यक्रम बस इतना ही रहेगा। आपके साथ था मैं, यानी आपका लीडर राहगीर रोहित, और आज मेरे साथ थी
1: और मैं हूँ आयुषी। तो दोस्तों, आज की ये जो हमारी जितनी भी बातें हैं, ये बस यहीं तक। अब आगे हम बढ़ते हैं।
0: आज के इस प्रोग्राम की परिकल्पना करी है मनीष कुमार सोलंकी ने और संयोजन किया है राजेश लामरूड ने। इसी के साथ दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रही थी अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता।

अल्ताफ राजा की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। और अब आपको सुनवाते हैं धड़कन फिल्म का गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ में। समीर ने गीत लिखा है और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

और आइए आपको सुनवाते हैं त्रिमूर्ति फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय

0: नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बॉम्बे शेयर बाजार का संविदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेशे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दोस्तों, लोग कहते हैं रिश्तों के बारे में कि इमोशनली लोग रिश्तों को संभालते हैं और प्रैक्टिकली लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं, वहीं प्रोफेशनली लोग दुनिया में फायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं दस्तक फिल्म की एक गज़ल जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और ये फिल्म बनाई थी राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने रेडियो नाटक, राजेंद्र सिंह बेदी का रेडियो नाटक था नकली मक्कानी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान ने और ये पहली बार था कि रेहाना सुल्तान और संजीव कुमार को एक साथ राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियाँ रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: शायर बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, चरागों को आंखों से महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांवों में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा।

0: पौधों उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

और दोस्तों, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके लिए है दबंग फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़ है, फैज़ अनवर के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जय माला।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति के इस गाने के साथ, सिकंदर आजान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल, हंसराज बैल का संगीत।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से ये गाना, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गाइड फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। शक्ति फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुन रहे हैं आप ये गाना आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरती अच्छे खूबसूरत बाल नहीं हैं, तो आज के जमाने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहां बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूं, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। पर मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि आपने मुझे यहां तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहां तक बात है, मैं हूं रत्नागिरी से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के जमाने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, अच्छा। किसी के यहाँ मसाला लगा दो उसके मुंह पे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आंख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा, वहां से कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहां तक पहुंचा हूं मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूं।
0: 33 साल
1: मेरी उम्र है, 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूं कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख
0: रहा हूं। हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर, आपकी जो सच्ची लगन थी वो आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य बहुत पुराने एक्टर्स थे, बंगाल के थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूछ लेकर पहुंच गया था, तो मेरी उम्र उस समय बड़ी छोटी सी थी, और वो देखते रह गए, बोले बेटे किसने बनाई है, भला मैंने बनाई है। तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लगा के दिखाओ। तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नजदीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नजदीक गया था। और जब मैंने वो मूछ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी, मगर उनको मालूम पड़ गई थी। पर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं था, कि उनको मालूम है बच्चा है, हिम्मत हार जाएगा। तो अभी भट्टाचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी लगा आपने मुझ, और बहुत अच्छी बनाई आपने। जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला,
0: मतलब उन्होंने एनकरेज किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है ही नहीं वो, और उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था, वो आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसके बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के दिखाई नहीं, समझ लीजिए आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
0: चलिए, बहुत
1: अगर किसी की विग नहीं बनी है तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूं, किसी की दाढ़ी नहीं बनी है तो किसी की

0: मुझे बना दिया हूँ, अगर और कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप या मूंछ दाढ़ी जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा,
0: वैसे नायलॉन की भी बनती है मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। असली बालों से जैसे विग बनती है या दाढ़ी मूंछ बनती है उसके बाद ही कुछ और आती लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
1: तो कहाँ से आपको वो नेचुरल बाल?
0: उसमें एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की एक खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको। वहाँ पर ऐसी श्रद्धा है लोगों के दिलों में कि वो अपने सारे बाल, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां अपने बाल पूरे वहां उतार के आ जाती है, फुल बॉल्ड होके, फुल टकली होके वहां से आती है, और वो सारे बाल, बहुत बड़ा कारोबार है ये बालों का, ये सारे बाल वहां से एक फैक्ट्री में जाता है, साफ होता है, साइज वाइज लगता है, और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे भी मिलता हूँ लोगों को।
1: अच्छा, तो आप कैसे विग बनाते हैं?
0: एक्चुअली क्या होता है, जैसे फिल्मों की अगर कोई किसी की विग बननी है तो डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है वो हमको एक फोटोग्राफ बताएगा।
1: अच्छा,
0: कि भाई इस आदमी को हमको इसकी तरह बनाना है।
1: अच्छा, ये जो बाल आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी होते हैं, आप भी उन्हीं लोगों से बाल लेते हैं जो असली होते हैं, तो ये क्या बहुत महंगा है?
0: अभी तक तो नहीं था मगर अभी ये 2-3 साल से इतने महंगा हो गया है कि एक्सपोर्ट चालू हो गया बाहर
1: जी,
0: तो उसके रेट्स बढ़ गए सब अभी।
1: आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहे, अच्छा सा विग लगाना चाहे, तो क्या कीमत पड़ेगी एक विग की अपने इच्छा अनुसार जो आपको ऑर्डर करे?
0: अगर आप बनाना चाहें तो 5,000 की बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहें तो 50,000 की बनती है।
1: अच्छा,
0: आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे लोग कहते हैं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा।
1: तो उसमें क्या क्वालिटी में क्या फर्क
0: है? क्वालिटी में जैसे बालों की क्वालिटी अलग अलग आती है, किसी के बाल बहुत ही सिल्की मुलायम होते हैं जो काफी महंगे मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: किसी के बाल बहुत ही लंबे होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं जल्दी मिलते नहीं वो भी महंगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस भी बढ़ती कम होती जाएगी।
1: पर अगर कुछ नहीं होते, आप विग ऐसा बनाते हैं जिसमें कर्ली बालों की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं
0: उसको? हम लोग मशीन से करते हैं ना, केमिकल से वगैरह पम्पिंग वगैरह करते हैं, उससे कर्ली हो जाते हैं।
1: उससे कर्ली
0: हाँ, अगर कर्ली बाल है तो उसको स्ट्रेट हो जाते हैं, वो तो बेचारे मजबूर बाल होते हैं, उनको आप जैसे शेप दो जो बोलो बेचारे मान लेते हैं।
1: अच्छा, एक शंका मेरे मन में ये आ रही है कि आप विग तो लगा लिया, फिल्म में कई टेक होते होंगे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि विग किसी का काम करते करते गिर गया हो, निकल गया, उसको फिक्स कैसे करते हैं?
0: वो क्या है, जो हम लोग जिस मटेरियल से विग को फिक्स करते हैं वो एक गम आता है, वो हमारे इंडिया में बनता है, फिर एक फॉरेन का गम आता है, उसको हम लोग लगा के जब फिक्स करते हैं तो आप उसको ऐसा पकड़ के उठा सकते हैं, इतनी उसमें ग्रिप होती है।
1: अच्छा, तो आम आदमी जिसको रोज अगर विग लगानी हो, आपसे उसने विग ली हो, तो उसको रोज ये अपने गम लगाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा?
0: यहाँ जो रोज पर्सनल यूज जो करते हैं उसमें तो एक टेप आता है जो डबल साइड टेप होता है, उससे आप लगा सकते हैं, या तो कैप की तरह पहन सकते हैं या क्लिप लगा सकते हैं। बहुत सी चीजें आज के जमाने में इतना इम्प्रूवमेंट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जैसा आप बोलते हैं विग निकल जाएगा,
1: हाँ।
0: मैं तो बोलता हूँ लगने के बाद आप हाथ से बड़े खींचे बाल निकलेगा नहीं, वो
1: नहीं निकलेगा,
0: नहीं नहीं, इसकी गारंटी इस बात से।
1: अच्छा, जैसे आपने पुरुषों के विग की बात की, महिलाएं अगर बहुत लंबे बाल चाहें तो ऐसा भी विग बनता है?
0: हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, जितने लंबे, जितनी आपकी हाइट नहीं है
1: हाँ।
0: उतने लंबे विग बन सकते हैं, बालों के भी और नायलॉन के भी, सिंथेटिक के भी।
1: अच्छा, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो आम आदमी पर्सनल यूज के लिए विग इस्तेमाल करता है?
0: सावधानी कुछ भी नहीं है, कोई इसका तो आइटम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ की वायर वहां लग जाएगी तो आईसी उड़ जाएगा, जल जाएगा, बस पेन लिए, कंघी कर लिए, तेल लगा लीजिए, अपने असली वालों में जो होता है सब वही करना है, इसमें कोई ऐसा सावधानी वाली बात नहीं है,
1: कोई सावधानी की जरूरत नहीं, बस आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का
0: लंबे बाल अगर है तो पॉकेट भी लंबी रखनी चाहिए आपको। ये बात है, बालों की जितनी लंबाई होगी उसकी पॉकेट की लंबाई भी बढ़ जाएगी।
1: आप बेसिकली विग मेकर हैं या मेकअप मैन हैं?
0: बेसिकली तो प्रोफेशनल के हिसाब से विग मेकर हूं मैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मेकअप मैन हूं, मगर इसके अलावा कुछ और भी मेरे शौक हैं, जैसे मैं गाने गाते रहता हूँ हमेशा।
1: अब हम फिर से आपकी विग वाली बात पर आ जाते हैं, आपके अनुभव कैसे रहे विभिन्न कलाकारों के साथ जिनके आपने विग बनाए?
0: मैंने जिनके जिनके साथ काम किया उनसे मैंने हर इंसान से एक एक चीज सीखी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी में हमेशा इंसान को वक्त पर चलना चाहिए।
1: कौन है वो?
0: अब सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक ही है, और जिनको देखकर, जो उनकी खासियत ये बताऊं मैं आपको, उनको देखकर लोग अपनी घड़ियां सीधी करते हैं।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया?
0: एक मेरे मनचाहे कलाकार है जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। देखिए, वो इंसान एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, डांस डायरेक्टर है, एक्शन है, ये समझ लीजिए कि एक फिल्म के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो पूरा पैकेज है, उनके साथ मैंने कम से कम 12 से 13 फिल्में की है मराठी, और सचिन साहब के मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए विग बनाया हो और उसमें बहुत

0: किसी ने मीन मेक निकाली हो।
1: ऐसा एक्ट्रेस जो होती है, एक्ट्रेस मतलब जो लेडीज स्टार्स होती है, उनके नखरे थोड़े ज्यादा होते ही है, तो हमको पुरुष पहले बोलता है कि वो थोड़ी नखरेबाज है, तो तुमको खाली उनके हमने हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना वही जो हम बोलेंगे। तो हम लोग भी क्या, हम लोग पुरुष के आगे हम लोग भी कठपुतली रहते हैं, क्योंकि पेमेंट हमको वहीं से मिलना है, हीरोइन तो पेमेंट करेगी नहीं, तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलाकर इनके साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग भी यस मैडम करते रहते हैं, कि उससे बुलाओ हमको, खाली तुम्हारे खाली यस मैडम बोलना, नो बोलने का ही नहीं।
0: अनवर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार कैंसर जैसी बीमारी की वजह से जो उसमें इलाज होता है केमोथेरेपी, बाल चले जाते हैं।
1: ये तो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। और क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज है ना मैडम, कि वो जैसे इंजेक्शन बदन में जाता है, एक ही रात में तकिए पे सारे बाल रह जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या, पेशेंट बहुत डर जाता है।
0: हाँ।
1: तो मैं वीक तो बाद में रहता हूँ, पहले पेशेंट से 2-4 घंटा बात करता हूँ। तो कैंसर से जब बाल जाते हैं, तो मैं तो मोस्टली अभी आपको एक बताऊंगा बात, कि मैं यहाँ से पुणे तक गया अपने खर्चे से, अपने पेट्रोल से, उनका मेजरमेंट लेने के लिए, उनको वीक देने के लिए, और मैं उनसे चार्ज नहीं करता हूँ।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये मेरी खासियत है। जब भी
0: मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे आप चार्ज
1: नहीं, मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी कोई बोलता है नहीं इतना महंगा, हमने वहाँ पूछा था, वहाँ पे उसने 18,000 रुपया बताया था, यहाँ पूछा था उसने हमको 20,000 रुपया बताया था, मतलब उसने बताया था आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ मेरे पास रेडीमेड भी रहता है, जैसे हमने शूटिंग में जो शूटिंग होने के बाद में बचते हैं,
0: हाँ।
1: वापस रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से एडजस्ट कर देता हूँ उनको। कभी कभी कुछ होता है ऐसे जो बहुत पैसे वाली होती है, बोले नहीं हमको मेरे जैसे थे ये फोटो देख के आपको ऐसा ही बनाना है, तब मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में बोलता हूँ मैडम अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा बनाना है तो मेरे को खाली आपके बाल के पैसे आप दे दीजिए, या तो बाल ला के दे दीजिए, आपको ये आदमी से मिला देता हूँ जो हमारे एजेंट हैं, हम लोग बाल लेते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए कि मेरे 300 ग्राम बाल चाहिए मेरे को, अब कितना पैसा लोगे आप, उसको उसकी पेमेंट कर दीजिए, आई विल मेक फ्री, मैं उसका जो मेकिंग चार्ज लूंगा आपसे। ऐसा भी मैं कई बार करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बात है ना, क्योंकि आदमी जब केमो लेता है तो उसको 2-4 लाख रुपए ऐसे खर्चा हो जाता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर मैं और एक बोलोशन डाल दूं बाल का तो अच्छा लगता नहीं।
0: तो ऐसा जो करता है उसका खुद अच्छा ही होता है ना?
1: मेरा तो हमेशा अच्छा हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ आजकल जो हेयर वीविंग का जो चक्कर है, हेयर पेस्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर खाली पेस्ट हो जाएगा मगर लगेगा बिल्कुल नेचुरल।
0: अरे उसको भी निकाल के रखना पड़ता है?
1: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,
0: वो लगा ही रहता है।
1: हाँ यस यस,
0: मतलब जितने बड़े लगाए वो बड़े बढ़ेंगे नहीं, बस
1: बढ़ेंगे नहीं, बस उनके हाइट मुकरी की तरह
0: धो सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैम्पू कर सकते हैं,
1: शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए।
0: अच्छा खर्चा कितना आएगा? अगर
1: 5,000 से शुरुआत ड्रामा होता है उसका तो 50 तक ज्यादा।
0: अच्छा ये विक के साथ इसका भी ऐसा ही करता है?
1: अभी आजकल विक कोई पहनता ही नहीं, जमाने खत्म, खाली फिल्म में यूज होती है बस,
0: मतलब थोड़ी देर के लिए।
1: हाँ। बाहर जो आजकल लगाते हैं वो हेयर वीविंग करा लेते, पैच लगा लेते हैं आजकल।
0: अच्छा।
1: इतनों के लगे हुए यू कांट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने नेचुरल लगते हैं आजकल।
0: अच्छा, अच्छा। अनवर पावस्कर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में, आज हमारे साथ थे विग मेकर अनवर पावस्कर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।
2: इनसे मिलिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया।

0: मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4:00

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चली गई। ओहो कहाँ गई? अभी रोटियां ही रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई।
1: कौन मम्मी?
0: तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत है, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है?
1: नहीं नहीं मम्मी, जाना है जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए।
0: ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
2: बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको। तुझे भी इसी समय आना था, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
2: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ
0: चीले मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
2: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि तेरे बूट तो बहुत महंगा आवे हैं, आप कितने रुपए गज लाई हैं?
0: ओफो जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? तेरी वुल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
2: अच्छा अच्छा मैं चलूं।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
3: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाल बार कहा कि मेरे बीच मत बोला करो।
3: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने हैं।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
3: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे, यही सोचकर मैंने दो दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से तीन खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
3: ओहो तो पंद्रों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाएगी।
0: तो और क्या करूं? आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब?
3: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा। हाँ अब क्या है साहब, देखो जब मिल जाए।
0: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन?
3: देखो भाई मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे रे रे, ये क्या कर रही बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
1: डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी।
3: हाँ
1: देखिए सुई घुस गई।
3: अरे सुई देखो तो ये रही। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं चुभी है, चुभी है। चल चल भाग जा।
1: मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए।
3: क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है?
0: इसकी स्पीच कितनी अच्छी है।
3: और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मेरे तो इतने ही चलाने में हाथ उठने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है।
3: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ से ले नहीं जाएगा।
0: भाई देखिए अभी तो जाएंगे ही।

0: जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा, फिर सीखूंगी भी किससे?
1: क्यों, मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो, उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
0: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आनी
1: चाहिए। अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप कपड़े दर्जे के यहाँ सिलने नहीं जाएंगे बस।
2: ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्या लाया है, बड़ी सुंदर लगे है। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारे बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
0: हाँ हाँ सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी।
2: ये तो हो गया, अब कैसे काटूं?
0: मैं बताऊं बहू जी?
2: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी है जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है, ये पजामा है पजामा।
0: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी हम गौर से सुने थे।
2: अच्छा बता आप कैसे काटूं? बड़ा सुने थी।
0: देखिए इसको जोर से कोई तानने, अच्छा फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
3: बेबी बेबी
4: क्या है मम्मी?
2: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ए ऐसे।
4: अच्छा मम्मी
2: अरे रे इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
4: अच्छा
2: मैं काटती हूँ।
4: काटिए। ये क्या है मम्मी?
2: ये कैसा हो गया?
4: ये तो
2: तिरछा हो गया।
4: ये पैजामा है बोला।
2: मैं तुझसे तब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो एक सा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूं?
0: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
2: हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
0: दबाइए। हाँ ये आओ।
2: ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है। ए, ए, ए, ए,
4: मम्मी, आई मम्मी।
2: क्या हुआ?
4: मम्मी,
2: हाय बहुजी, रसोई तो बैठी थी, उंगली क्या रहा था?
5: हाय मैं क्या करूँ?
2: बहुजी पहिया आगे घुमाओ।
5: मम्मी
2: बेटे घबराओ नहीं, अरे मोहिनी जो डॉक्टर को बुला लाना।
4: मम्मी
2: मैं बोल लूँ बहुजी, पहिया उल्टा फेरो, हाथ निकल जाएगी।
4: मम्मी

0: इससे नहीं मोहनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे।
2: मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ। बहू जी, बाबू जी आज लौटेंगे?
0: हाँ आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गे?
0: हाँ एक महीने से तो ऊपर हो गया। मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बाबू जी। अच्छा।
3: बेबी बेबी दादा देखो बेबी।
0: आती हूँ। जा मोहिनी देख, वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबू जी नमस्ते। बाबू जी
3: नमस्ते। कहो भाई सब ठीक ठाक है ना? अरे नीना ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
0: अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटल लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
0: अब मना भी तो नहीं किया जाता, जरा से काम

0: के लिए।
1: कौन है? मोनी जरा देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
2: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मरे दी, अब शायद ही इम्तहान दे पाऊँ, कलमी नहीं पकड़ी जाती।
1: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी, जरा ध्यान से पढ़ती रहो, बस इम्तहान तक सब ठीक हो जाएगा।
0: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
1: मोहिनी, नौकरानी गई?
0: हाँ बाबू जी।
1: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो, और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
0: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी अभी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
1: मान जाए बुरा? मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही
0: है? जी जी जाती हूँ। बेबी देख तो कौन है।
1: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
0: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
1: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा फरसिया है, 2 महीने हो गए मशीन आए।
2: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
1: क्या कह रही है?
2: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सी लूं।
1: सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कह दे मशीन खाली नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
2: अच्छा।
1: क्या क्या कहा तुमने? यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
0: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खींच तो जाएगी नहीं।
1: हाँ हाँ, ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना, एक दिन ना पछताओ तो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती क्या?
0: ओ, आप तो
1: ठीक है, मेरा क्या है?
2: डैडी,
1: क्या है?
2: एक मिस्त्री आया, उसने ये पर्चा दिया है।
1: क्या है? दिखा। नीना, ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
0: दुकान पर?
2: हाँ मम्मी, गई तो थी वही, जब डॉली ने उसके अंदर सलाह खड़ा कर पहिया चला दिया था।
0: हाँ, जरा सी खराब हो गई थी।
1: ये देखो ये देखो, मैं पूछता हूँ अब कौन देगा ये रुपए? अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
3: बाबूजी।
1: ओ, अब कौन है भाई?
3: मैं झा साहब के यहाँ से आया हूँ, मशीन लाया हूँ।
1: चले आओ अंदर।
3: अच्छा, कहाँ रख दूँ बाबू जी?
1: यही मेज पर रख दे। ये मशीन को क्या हुआ?
3: बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी, सो थोड़ी सी खराब हो गई।
1: ये
3: है।
1: थोड़ी सी खराब हुई है?
0: क्या हुआ?
1: हुआ है हमारा सर, और क्या, देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2-1 जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग
0: जाए। हम की तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
1: ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए, तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
3: कहाँ बाबू?
1: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
0: कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइएगा।
1: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी, मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना, भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।
4: मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी, आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉकस्टार फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

जाने तू या जाने ना फिल्म से सुन रहे हैं आप ये गाना राशिद अली और वसुंधरा दास की आवाज में, अब्बास टायर वाला के बोल या रहमान का म्यूजिक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। जोनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे-धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली

0: संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे

0: बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के

सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की बात

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में डांसिंग ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिला।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

0: वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।
1: वो है

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब।

0: जानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for finance, inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से

भी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने

फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।